नागमिनी यंखेमंगा इकाई खुमने जरीबा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना लेबाक मियाम दपीबा पुकनिंगीवा मन की बात की चामग कुंठा तरित सुब तांक तहन जगनी नुमिदुंग मतुंग पुंग तरा निथोई मिनिट तरा फंग बिगनी रेडियो लीला कुरा लीला इबा शांत खुराई लीला सिबु पुथोकपा माइबम ईशाकांता पुथोकपा दतेंगबांगबा अथोकपम सुभाष चंद्र गीत माला की थौरम फंगबिगनी पुंग आमा गमिने तरा वेस्टर्न म्यूजिक महौशागुम थमजरी पुंग अनी मखाई नुंगथिल की पुंग अहुंग गमिने कुंत्रा मंगा फंगबिगनी रेडियो क्लास चमरी सुपना हुमफुतरा निथोई शुभ तांग ककता क्लास सेवन की हिंदी लेसन नंबर 19 कबीर के दुहे वाखलमदी शै तहन जगनी पुंग मरी गमिने मंगा

0: ise se tahan jake bagaluina na tangka kasigi uina matamishai sing matamata nguina lantok chaba luisere.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तुंगन तुंगन बधौरम सिंह लेप्तन संदूक तुन तहन जरीबासी आकाशवाणी फागी FM संगाई चैनल दगिनी हाउसिक पुंगफम सिदा संदूक चरी रेडियो क्लास चमरी सुपना हुमफुतरा मथो शुभ तांकता क्लास 7 गी हिंदी लेसन नंबर 7 ईशा मसीहा थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर गी तेंगबांग लुइनना संदूक पथौरम नी।

0: माँ, क्या घर के काम अभी तक खत्म नहीं हुई?
1: हाँ हाँ आ रही हूँ। मैं दूध का ग्लास धो रही थी, अभी आती हूँ।
0: माँ, सुबह से अब तक घर का काम खत्म ही नहीं होता। इतने सारे काम, वो भी जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, फिर भी काम कम नहीं होते। हमेशा काम काम काम। सच में औरतें बहुत काम करती हैं।
1: क्या करे बेटा, तुम्हें किसने बताया ये सब?
0: किसी ने नहीं बताया,
1: तो
0: मैं आपको जो देख रही हूँ, आप तो कभी आराम ही नहीं करती।
1: हाँ
0: मुझे पढ़ाने के समय तक नहीं मिलता।
1: हाँ
0: सचमुच सभी औरतें बहुत मेहनत करती हैं।
1: लगता है मेरी बेटी मुझसे नाराज है। अब मुझे समय मिल गया है, घर का सारा काम भी तो हो गया, इसलिए अपनी बच्ची के साथ पढ़ाई करने आई हूँ। आज तो छुट्टी भी है ना?
0: माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस आपका किया हुआ सारा काम देखती हूँ, इसीलिए ऐसा कहती हूँ। माँ, आज तो छुट्टी है, तो हम देर तक पढ़ाई करेंगे।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर पढ़ेंगे। जो तुम्हें पसंद हो वही पढ़ेंगे, बताओ।
0: हाँ हाँ ये रहा, आज ईसा मसीहा यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक गुरु, उनके बारे में पढ़ाई।
1: अच्छा, तो तुम जीसस क्राइस्ट के बारे में जानना चाहती हो, है ना?
0: हाँ माँ, उनके बारे में बताइए ना।
1: तो ध्यान से सुनो बेटा।
0: जी माँ।
1: बैतलहम में राजा हिरोद के मृत्यु के 4 वर्ष पहले एक यहूदी परिवार के अस्तबल में एक दैविक लड़का पैदा हुआ था। ईसाई धर्म के अनुसार उन्हें पवित्र महापुरुष बताया जाता है, लेकिन उनके जन्म के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। कोई कुछ कहते हैं तो कोई कुछ और। मैथ्यू और ल्यूक में सिर्फ ये उल्लेख किया जाता है कि जेरूसलम में एक दंपति के घर एक लड़का पैदा हुआ। वह दैविक लड़का जब 30 वर्ष के हो गए, तब से उन्होंने धर्म प्रचार करना शुरू किया। उस लड़के के जन्म से संबंधित जानकारी इस प्रकार है कि आज से 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने इज़राइल में रहने वाली मैरी नामक एक कुमारी के पास एक फरिश्ता भेजा।
0: कुमारी के पास फरिश्ता क्यों भेजा?
1: वजह यह है बेटा, इसलिए भेजा।
0: माँ, फरिश्ता किसे कहते हैं?
1: देवदूत यानी ईश्वर का संदेश वाहक।
0: फिर क्या हुआ?
1: उन्होंने मैरी से कहा,
2: मैरी, ईश्वर का आदेश सुनो। तुम कुमारी अवस्था में गर्भ धारण करोगे, तुम्हारी कोख से एक बच्चा जन्म लेगा।
3: नहीं नहीं नहीं, हे देवदूत, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं इस आदेश का पालन नहीं कर सकती। सारा समाज मुझ पर लांछन लगाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सगाई जोसेफ नामक एक आदमी से हो चुकी है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ओह, मेरी कही एक बार भी नहीं माना और अदृश्य हो गए। अब मैं क्या करूंगी?
1: और जोसेफ के कानों तक ये बात पहुंच गई। एक दिन जोसेफ के सपने में आकर उस फरिश्ते ने कहा,
2: सुनो जोसेफ, तुम्हें मेरी से शादी करना होगा। उनके गर्भ में पल रहे बच्चे एक असाधारण बालक थे। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा।
1: जोसेफ एक साधारण सा बर ही है। उन्होंने उस देवानी का खुशी से स्वागत किया। आदेश पालन करते हुए जोसेफ ने मैरी से शादी की। वह मैरी को लेकर बैतलहम आ गए। वहां पहुंचकर मैरी ने एक लड़के को जन्म दिया। उनका नाम जीसस रखा। कुछ दिन बाद दरबारियों ने राजा हेरोद को बताया कि जीसस संपूर्ण इज़राइल में ही नहीं बल्कि सारे संसार में राज करेंगे।
0: माँ, क्या राजा हेरोद क्रोधित नहीं हुए?
1: अरे, क्रोधित कैसा न होता। ये सुनकर राजा हेरोद बहुत क्रोधित हुआ।
0: आगे क्या हुआ माँ?
1: फिर उन्होंने जीसस को मार डालने की षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। तभी फरिश्ते ने जोसेफ को मिश्र देश जाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राजा हेरोद का देहांत हो गया। ये सुनकर जोसेफ अपने परिवार सहित इज़राइल वापस लौट आए। अपने पुत्र जीसस को नजरत नगर में रखा। वहां किसी पर्वत पर बैठकर अपने लोगों को उपदेश देते हुए धार्मिक सिद्धांत तथा धार्मिक कथा सुनाते थे। उन्होंने कहा, अपने शत्रु से भी प्रेम करो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, दूसरे लोग तुमको जिस तरह व्यवहार कराना चाहते हैं उसी तरह तुम भी दूसरों के प्रति व्यवहार करो।
0: माँ, वे तो बहुत धार्मिक और दयालु थे।
1: हाँ, इसलिए तो संपूर्ण संसार में इनकी प्रसिद्धि है। लोग उनसे बहुत विश्वास करते थे, उनके गुणों की प्रशंसा और चर्चा करते थे। दिन ब दिन उनकी शक्ति बढ़ती गई। हवा तथा सागर तक उनका कहना मानते थे।
0: सच में? सुनने में तो अजीब लगता है।
1: हाँ, मैं भी बता नहीं सकती क्योंकि मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन इनके जीवनी में तो बताया गया है, उस पर अधिक मत सोचो, आगे की कहानी सुनो।
0: जी माँ।
1: एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ गैलिलिंग सागर में जा रहे थे। अचानक सागर में तूफान उठने लगा, लहरें उठने लगी। सब लोग इसे देख घबरा गए। लोगों की घबराहट देख जीसस ने तूफान से शांत होने को कहा।
0: माँ, तूफान शांत हुआ क्या?
1: उनकी बात सुनकर तूफान शांत हो गया। इस तरह उन्होंने अपनी शक्ति कई स्थलों में प्रयोग किए, जिसे लोगों ने देखा और लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाया। जीसस का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम लाजारस था। वहां अपने बहनों के साथ बैठनी में रहता था। कुछ दिनों के बाद उनके मित्र लाजारस की मृत्यु की खबर जीसस को मिली। वह तुरंत बैठनी में गए और मृत शरीर को रखने के लिए कहा।
0: यानी मरने के बाद कोई शरीर को जलाते हैं तो कोई जमीन में दफन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करने को कह रहे होंगे, है ना माँ?
1: बिल्कुल सही। मृत शरीर को 4 दिन तक रखा गया। 4 दिन बाद उन्होंने अपने मित्र लाजारस को पुनः जीवन देकर जीवित कर दिया। उनके गुण और शक्ति का समाचार हर जगह फैल गया। लोग उन्हें भगवान का पुत्र कहकर पुकारने लगे। लेकिन मनुष्य के भीतर कुछ अवगुण भी होते हैं।
0: किन अवगुणों की बात हो रही है माँ?
1: देखो, जब किसी को प्रसिद्धि मिलती है, एक तरफ ईर्ष्या से उसे नष्ट करने, उसको मिटाने के लिए कई लोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो दूसरी ओर उनके गुणों की प्रशंसा करने वाले लोग। अच्छे व्यक्तियों के बहुत मित्र होते हैं, दुश्मन भी कम नहीं। ये जीसस के साथ भी हुआ। इनके मित्र भी बहुत है और शत्रु भी।
0: इतने अच्छे व्यक्ति के शत्रु भी होते हैं?
1: क्यों नहीं बेटा, मैंने पहले भी बताया था ना कि मनुष्य के भीतर कैसी गुण होती है। सोचने समझने की क्षमता के कारण मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कुछ व्यक्ति जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनकी प्रशंसाओं को सुनकर यहूदी के प्रमुख नेताओं ने उनको मारना चाहा। उन्होंने जीसस पर कई आरोप लगाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया।
0: लेकिन मुकदमा चलाने जैसे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे वो।
1: थबा बेटी, तुम भी तो नादान हो, इसलिए मनुष्य जीवन के बारे में नहीं समझोगे। बड़े होकर पढ़ लिख लोगे तब सब समझोगे। मैं अभी सिर्फ जीसस के बारे में सुना रही हूँ, जैसे जीसस कौन है, वह किसके बेटे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया, इतना ही। उनकी कहानी तो बहुत लंबी है, तुम्हारे पुस्तक में तो सिर्फ उनकी संक्षिप्त कहानी है।
0: माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं उनके बारे में पढ़ूंगी। मैं तो उनके अलावा और महान व्यक्तियों के बारे में ही पढ़ूंगी।
1: जरूर पढ़ना बेटा, उनके बारे में पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। अरे थबा, जीसस की कहानी भी अभी

0: पूरी नहीं हुई है।
1: तो फिर सुनाइए माँ।
0: हाँ हाँ सुनो फिर। उसी मुकदमे में उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। रोमन गवर्नर पैलेट ने जीसस को मारने का आदेश दिया।
1: क्या उनके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ?
0: नहीं, क्योंकि गवर्नर पैलेट के विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। उसके आदेश अनुसार जीसस को 36 वर्ष की आयु में सूली पर चढ़ाकर मार डाला। बाद में उनके लाखों शिष्यों द्वारा उनके धर्म का प्रचार किया। उनके नाम पर ही उस धर्म को ख्रिस्तान धर्म कहा जाने लगा।
1: माँ, 25 दिसंबर में जो क्रिसमस मनाया जाता है, ये जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है ना?
0: है। थबा, आज के लिए बस इतना ही। अभी घर का बहुत काम बचा है।
1: ठीक है माँ।

आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी ने पाव पजरी अहनबदा मरु इब पाव बिष्णुपुर जिला तकी सिक्योरिटी की अपुन बकंगबो अमना यामलाबा खुजुखुलाई सिंह फगले नुमित नेने की खोंचत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की कोनुंग टास्केंड ठुंखरे अमिजुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुकनी की वा मन की बात की सामकुंठा तरह सुब एपिसोड नसी अयुपुंग तरह मथोई द आकाशवाणी की थोंग द संदोकनी बिष्णुपुर जिला तक सिक्योरिटी की अपुन बकांगबो अमना यामलाबा खुजुखुलाई सिंह फगले पुलिस की पाउनहाय जिला आसी की मनुंग चनबा कैफा रोड पेटन वाटर सप्लाई पंप मनाकदा थिउब की थबक सथबैद फंकीबा खुजुखुलाई सिंह अदुगी मनुंगदा 9mm पिस्तोल अमा 0.32 की पिस्तोल अमा कंट्री मेट AK राइफल अमा कंट्री मेट MP9 नोमई अमा कंट्री मेट SBPL नोमई अमा अमदी 0.22 की कंट्री मेट राइफल अमसु यौरी मसीगी सुमथक्ता हैंड ग्रेनेड अनि IED अनि अमदी तुवान तुवान बपोलम सिंह फंकी हाइदी अतोपा थौदो अमदना कुंठामा थुइसुबा असम राइफल्स की कांगबु अमने पिरकप पाउद युमफम ओइतुना इम्फाल वेस्ट कमांडो ना लंबुई खुनांगकोंग एरिया दा तिहुमबकी थबक सथबदा KCP अपुनबकी एक्टिव कादर ने हाइबा म्योय अमा महाकी युमदकी फारे म्योय असितकी IED अमा 9mm की नोमै मरु मंगा अमदी सका अनि पानब गाडी अमा फगले थौदो असिगी मखा तारकपदा KCP अपुनबगी अतोपा कादर अमसु खुमबोंग ममांग लेकाइतकी फारे हाइरे अमरुमदा कुंटा हुमदोई सुबा असम राइफल्स न पिरकपा थाजबयाबा पाउगी मतुंग इना इम्फाल ईस्ट कमांडो न सथकी बथी हुमबगी थबकता इम्फाल ईस्ट के लाइफम खुनौ लेन नंबर 5 तगी KCP नोयोनगी एक्टिव मेंबर अमा फारे हाइरे संस्कृत भारती मणिपुर प्रांत संस्कृत टोल इम्फाल सिंधुना संस्कृत सप्ताह चरणम नुमितरानी ऑनलाइन संस्कृत भर्ग समापन समारोह धनमंजूरी यूनिवर्सिटी कैंपस संस्कृत टोल इम्फाल पांथोकलगनी थरम धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर W चानबाबू अथोब मिथुंगलेन सरुक यागनी राधा माधव अध्यक्ष संस्कृत महाविद्यालय की

0: राज्यपाल प्रोफेसर बुडेश्वर सारंगी संस्कृत भारती की क्षेत्र संगठन मंत्री मोहक कानन अमदी संस्कृत भारती मणिपुर प्रांत की अध्यक्ष एस बिदेश्वर शर्मा सरुप यागनी मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर MIYC ना चिंतुना इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस कमरी लेना स्पेशल लेक्चर अमा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा गंगसी पंगथोकनी कांचीपुर नेशनल रिसर्च सेंटर पंगथोकदब थोरम मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की हेड डॉक्टर युमनाम प्रेमानंदना रिसोर्स पर्सन ओइना इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस की मतंगद वांगंगकनी राज्य सरकार की आर्ट एंड कल्चर विभाग ने पैखट पर चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट की तेंबंग की मखाद यूनाइटेड वुमेन सोशल एंड कल्चरल फोरम ने चथरप नुमित कुनमंगानी की ओइबा थिएटर वर्कशॉप मसी लोशिलगनी लोशिनब की थौरमद तौरंग असी की मखाद नौन पुथोप सरुंग खुल हाइना मिंगथोनब ड्रामा अमसु उतकनी इंडियन मिथोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाई मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा नागालैंड सिक्किम मैयाब नौसुगनी अटोप वाणुपुदम की राज्य सिंह अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय अकनब नौसुरब की मधक्त लेबाग तोान तोान मफम नौसुगनी मफम छत्तीसगढ़ गंगेटिक वेस्ट बेंगल बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की नौपो तब सरुक झारखंड सब हिमालयन वेस्ट बेंगल उत्तराखंड विदर्भ उड़ीसा दिंगी हयंग अकनब नौसुगनी IMD रेड अलर्ट लौथोखे पाव की मरक अटेंब ब्रेक
1: मियामद खंगंजब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स इम्फाल निंथौकाब खुदिंगी नुंथिल पुंग अनीदगी अहुम मखाई फाउब रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी फंब हौजरे जिंद सोइब लेबदगी हौरकप लैना सिंग पोकपदगी सोइरकप मपुंग मरै फारकपद थिंथब नत्रगा इमुंग मनुंगी शुरोंद लौनब लैना सिंग लै हाइना चिंगनब सिंगबु खंगदोकप ज्ञान तामिनब अमदी तौफम थोकप थौरम सिंगगी दमक मियामद लाकपिनब खंगंजरी मखाताब कुपमरोलगी दमक रेयर डिजीज एंड जेनेटिक्स ओपीडी सेकंड फ्लोर न्यू ओपीडी ब्लॉक रिम्स इम्फाल दा लाकपिनबा निंगसिंग जरी
0: तबी ब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिने नुमिनिनी की खोंचाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की कोनुंग टास्केंड थुंगरे माकपु लेबाग अतुवी राष्ट्रपति सबकर मिर्जियोयेव न तराम ओखी श्री मोदी बु टास्केंडा लेब भारत मिचा सिंहनासु तराम ने ओक्लम की बगल लोइनना टास्केंड छार पुंब भारत की मचु ओम की फिराल थेतुना श्री मोदी बु ओक्लम की ngasi Sri Modi amadi Uzbekistan ki rashtrapati Shavkat Mirziyoyev na tongan tongan be hiram singi matang da wari sanaduna ngalingai matam da gi lerak laba lebak ani gi mari hena chechil hanna ba pandam thamli wari sanakata be hiram singi manung da lalol iti ngak sel digital connectivity energy amadi mahima singi lam yauna lebak ani gi miya marakta phaba mari thamna ba gi matang da khanagani Sri Modi na Tashkent leba Sastri Memorial amati Mahatma Gandhi Center dazu satlabai haidi Pradhan Mantri Narendra Modi gi pukni ki wa man ki baat ki samakunta tare chuba episode ngasi ayu pungtara mathoida Agasbani gi thongda sandokani Tharumasi AIR News DD News PMO Amazon Information and Broadcasting Mantrale gi YouTube channel sing dazu live streaming tawtuna sandokani थरुमसी LRS सोरचानपुरदसु संदोकनी मसिगी मणिपुरी वहांतो प्रधानमंत्री ने वांगांग बहेक लोइबगा आकाशवाणी इम्फाल ने संदोकनी मसी ngasi numidang pung nipan dasu amukhana sandokani dialect launching dana hayeng sandokani नेपाल अमदी तिबेट थोप खुदगी इसाउद लेखिदब मी मसिंग साटो खुमपुमा पन योक्रे मी लिसिंग अन हेना थिब पंगद्रे ऑफिशियल ओइब पाउगी मतुम इना इसाउन सोगल लब लेबाग अतुगी तुंगा तुंगान बजिला सिंगद हुजिक्सु तिहुमबा अमते मी कनबगी थबक लेपतन सथरे मरु ओइना पुलिस की कंगबुना तुंगा तुंगान प एजेंसी सिंग अमते मियाम ग लुइना न मांगरब मी सिंग थिबगी थबक कन सथरे मरक असीद नेपाल की हौजी ओरिब फिवम असीद भारत ने मतें पांगबगी थबकचो लेप्तन संगछिली ngaksil mantri rajnath singh nai yumthang na balepak ma oibagi mathakta miyoibagi minungsi yengnaka bharat na nepal da mating pangbagi thabak leptana sathari amirom da bharat ki mapan thoram mantrali gi matung inna hoji phawbada laibak thiba thawdo adu nangkhiba bharat macha marphu nipan kanbangam khre मंत्रालय की मचिन चट पर मिसक रणधीर जयसवाल ने फुंगदरों की मतुंग इना भारत मचा चनी मरफु तरे थीब खंगदर लेडी हाइडी ngasi phongba paukje singi maru eba pauk singi dama hauje khetri mayum premchan leidi premchan
2: Thagachiri Nolini. Sangai Express Manipuri Edition gi ahanbe headline da Jup Masel Kapna Bada Ani Shire Taruk Shokle Haina Fongmo Thengnare. Pokno Famgi ahanbe headline asi Awangbauna Nemsa Kipgenda Hai Naha Ki Mi Shingda Minung Shileiba Masung Christian Oiba Tambiyu Pawasi Sanalibak Pawshidana Nemsa Amadi Kuki Leader Singna Kuki Singda Miyoi Bagi Loncha Takpi Tambigadabani Haina Awangbauna Yumaina Fongno Kiba Wafam Headline Piduna Fongle Huenlan Pawdana Ching the Nongmaina Kaptuna Hartpa Leptri Tampak the Bom Matang Matang Pokhairi JDUF Masal Kapna Bada Amukasuku Tokna Bada Amasire Taruk Shokle Haina Ahan Headline Piduna Fongle People's Chronicle Gi Ahan Headline Asi Sports Infrastructure Gidamak Lupa Koti Manga Kaitokuna Thamle Haina Mantri Govindasa Fono Kiba Wafam Fong Butengare Chakigatoraba Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal Mukhya Mantri ga unakre Rajab Singh Thakur Anubha Chief Secretary Oiraba Yai Haina Sangai Express English Edition da ahanbe headline piduna phong buthengnare Sanaroi Singh bu lengak na mapung fana manung mapan fauna uhanduna amasung merita chapchana yumpham oiduna thabak pirigani haina Mukhya Mantri na phono kibu wafam Huyenlan Paugi anishubha headline oide Pawasi Sangai Express Manipuri Edition dana Recruitment policy na Sanaroi Singh da Kanabu Singh pirigani haina Mukhya Mantri na phono kibu wafam headline piduna phongle Supreme Court na MLA Karam Shyam da legal notice issue tokre haiba Pawasi Pongna fam Pawasi gi ahan bilamaida maruiba Pawaina phongbu thengnare Atopa Pungnafam Pauksigi Pau Amadana ILP Katana Watok Singsi Lotion Mangam Loihaina Prioranjan Nafono Kiba Wafam Fong Mutenare Nolini
0: Takazari Premsan Arubida Maruiba Pau Amukana Bishnupur Jilla Taki Security Gi Apunba Kangpu Amana Yam Laba Kuzukulizing Pagale Nimit Niniki Kongchetta Pradhan Mantri Narendra Modi Uzbekistan Gi Konung Taskend Tungkre Amishung, Pradhan Mantri Narendra Modi ki puni kiwa man ki baat ki samakuntha tare suba episode ngasi ayupung tara mathoida akashbani ki thongda sandokani paulo jade.

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अदम नाबीरीबी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल द संदोक चरीबा गुड मॉर्निंग मणिपुर लाइव फोन इन प्रोग्राम द फिल्म सही खनब की थोरमने अदम सो खोई की स्टूडियो की टेलीफोन नंबर 8798803293 कॉल तो भी रखतुना थोरम सेबू सरुक्या भी हुआ है ना हम कहने निंग कॉल अमुक लोकत चगे हेलो
8: Hello, good morning.
7: Good morning. Thoram da taram na ukchari ming lefam hai biyo.
8: Good morning, madam.
7: Good morning. Adam gi ming lefam kham jage.
8: Ai asan ni gai makha le kai dege mangsa da mi na ungani.
7: Ina u bobo ko gi. Akho gi thoram da taram na ukchari.
8: Madam. Uri gai ma de film de gi. Khuda kham je kuma ga. Aram mam jam na da chakwa. Thawa gi ma be ma jo hau do. Di je da kuma san gi me ka. अरे बम शाम शर्मा हमें दी आही बम बुद्धि संग्रह अन्य ने सहरान ले शहीद करता जगे
7: इसे इसे मरिक चुम न सुहाई भी रहे दो इनाउ चा इसे इसे हाउस एक क्यों इन्हें दिखो दो तम जबंग हम जरूर दो रे अतो पर फिल्म की इसे ही मखन भी
8: हो ओ हज़ी की इसे फिल्म जी की इसे ही पंगरा जब ना
7: अतो पर इसे ही मखन भी हो सो इधर नमकी कुदो तम
8: जग मतंगे मणिपुर फिल्म देगी सभी सभी मफम को जिंग आई ना है दो जमुना का चंद्र का सब दो
7: हाय
8: खुदा के फुले दो ने सेम में बता दी ताजा लगे
7: इनाउ चाहिए सही से खुदो सो इधर ना तमजर गये दो सही सक पा सही सक पी अनि देगी ताज रंगे दा सोम देगी सही से मते कम गंभीर मो और
8: मैदान याम जह जह जह तो फिर कितन हम लोग जरा मर जाए चलनी चलनी मफम खुदी आईना चलनी चलनी मफम खुदी आईना।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर दा
1: मॉर्निंग
0: तारांग
1: मैडम.
0: अक्षरी, गुड मॉर्निंग. फोन तो बिरे इसी का ना हो बिरो बनो.
1: ओना अम्मा ने रखा नौरूम बिना ने मैडम
0: बिना नुंगाई बिरी को.
1: मैडम वासी दी नुंगाई ए दाउ थुंग गया दो माले खा हु मरी सुरे फंग दब मैडम.
0: हाय नसी बिना का थिंग ना जब तो कि मतिक नुंगाई जे एदो नसी नुंगाई ब मिकुप सिदा करी सई नो ताबी दोई से बिना फमी सई खन बियो.
1: मेरा मसी जी नुंगाई बमा ताजी आ कनोजी नमई फिलोंगी आ थेजो ताजी ताजी की जई ने नुंगसी की मई का तब दो
0: याम ना फजबा इसे इमे सु खनबी रखले दो इसे इसे बिना की खोंजल दगी अमुक तंग अंग थोकपिरम मा गति थोरम से मपुंग हेना फागे ने ने खनजे अदो खुदो मते अम तंग तो बिरम ग जाबिना.
1: मैडम हाइजे हाइजे दे मती अम तो जरागे
0: होय होय
1: हो जरागे को मैडम
0: हाउ बिरो
1: ki jaine aidi nu sigi mai cha.

0: ख्रुइथुम लब सैसक्प सिंगि खोंजल दा निंथिरब मयेक न तांगजेदुना जंत्र कयागी मखोल अहुम सिनपुन्ना लेटिंग लदुना सेमलक लब मणिपुरी फिल्म सैसिंग गि मरक्ता ngasi ngasi maksu miyam ne yam na pam nangang nariba film ase degi ishema taminasi
1: ai kon hairegeda

0: तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना,
0: और ये मेरी गुड़िया की ना।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
8: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
9: नमस्ते सर। नमस्ते
8: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
9: सर धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
8: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
9: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
8: कृष्णा जी आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको

0: हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं। हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां

0: पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर थ्री इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव दो प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंट

टैलेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की TS निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी

उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से
फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब
4 टन एवोकाडो का

उत्पादन कर चुके हैं, आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन

0: की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है।
3: जरबा इरेबाक्चा सिंह खुरुमजरी मन की बात की अनौब तांकक असिदा मयाम पुनमकपु अमुक हन्न तराम उच्चरी मयाम नहेन खंगबीरी बदुनी मसी मयाम ना पांगथोक पिरकपा अनौब थबक मयाम दुगी पुनफम खंगफम ओइरिब मफमनी इरेबाक्चा सिंह गी इनोवेटिव आइडिया गी मरम सिंह दसु मखोय सिंह दुगी वखलोन दुना अतोप मियोय क्या गी पुनसिबु इनोट हाबले मरुप सिंह मतम खरगी ममांग दा सोशल मीडिया दा मियोय अमने इरखी इंगागी एकादशीगी सेंगलब मिकुप असिदा अयाकना वाफम असि हाइजबदा अदुकी मटिक नुंगाइजै मरमदी पुवारीबु अमुक हेन पुनिंग चिंगसिननबगी अनौब होनब अमनी महाकना मखाताना हाय मसिगी आइडिया असि यामन चंब आइडियानी वेबसाइट सिद चंगलगा चही अम हेक्त खनबियु मदुदा मतमदुदा भारत की करंब मफमदा कनाना लेबाक ngakli हायबदु हेक्त खंगम ngamgani मसि एंगोंदसु यामन नुंगाइना थोखी अयाकना मसि अमुक हेना ममुत्तान खंगनिंखी थिजिनबदा थबक असि मुंबई दलेबा श्रीमान कृष्ण सेसाद्री न तौबनी हायब खंगम ngamखी यामना नुंगाइब वफम अमना कृष्ण जीना वेबसाइट की ममिंग असि यामना चमना www.bharatrajya.com हायना थोंबिरमी मसि मयाम पुम्मद खंगनब तंगाई फदे मरमसिना अयाकना कृष्ण जीगा वारी सानजगे हायना खल्ले मरुफ सिंह कृष्णजी फोन लाइन ले रहे खुरुमजरी कृष्णजी
4: खुरुमजरी सर खुरुमजरी
3: मरुप अयाक न खंगबदा नहाक ते की संसार दगी सुनते पुवारी की ओजा सुनते अदुमोयनमक अदोमना टेक्नोलॉजी सिनदुना पुवारी की साइट अम सेमली मसी पुनमक से कमदौन पांगथोकलिबनो मसीने अयाक न खंगनिलिबसे
4: थगचरी सर अदोम गवारी सानजब फंगजबसी अयाक की लाइबक फबनी आई इसा की मरमदा खरा हाइजगे सर आई इंजीनियर अमनी अयाकना MBA सु तमकी अदुदगी अयाकना मार्केटिंग की फील्ड दा चंगले अदुबो अयाक अंगांग ओइरिंगैदगी हौना पुवारीबु यामना पामजरखी अयाकना पुवारी की मरमदा करिगुंब खरा तौब पामखी मियामबुसु मसीदा पामनहनब पामखी अयखोइना हिस्ट्री तंब मतमदा अहोंगब कया पुरकप ngamhanganी लोइनना हिस्ट्री असी वारी मचा अम ओइना मियामना पामनहनब होननिंखी
3: कृष्णजी भारत की पुवारी की करम्ब तांककपु मियामन हेन खंगफम थोई हायन खनबगे
4: सर अखोइना भारत की पुवारीबु स्कूल अमदी कॉलेज सिंगदा तंबीब मतमदा साम्राज्य अमदी निंगथौ पानब लमदम अमगी मिदियंगदा तंबी लोइनना साम्राज्य अदुदा का हेन पुंगनिंग चंगबगी मोंग सुफंगी साम्राज्य मयाम सिगी मनुंगदा अचौब साम्राज्य कयासु याउरी चोला पल्लवा कारकोता सागै काश्मीरदा असामदा अहोम सागैना यामद्रबद चही चाटुक हेना असाम की संस्कृति मखोय की सिस्टेम की बेलुन चिंगब लेंहनदन थमलमकी मयाम सिगी मरमदा कनाना सुखंगदे मरमसिना अयाकना साइट अम सेमलगा मियामद मसी खंगहननब होनगे खनकी
3: कृष्णजी अयाकना अदोमन कन्न होन जरीबा सिदा वहांग मत हंगजगे करिगुंबा अदोमन इंडियन हिस्ट्री ग मरी लेनबा मियोय अहुंगा वारी सानबगी खुदोंचाब फंगलबदी कनाग वारी सानब पामगनी अदुना करिगिनो
4: अहोय सर अयाकना अहानबदा राजा राजा चोला नत्रगा राजेंद्र चोला ग वारी सानगनी मखोई चोला सागई की ख्वाइदगी शक्ति लेबा

0: အကစ်ပနင်ဖာလ်ဝိုင်ဟင်ဘုံဝါရှင်တန်ပေါပာဂျရီအဟန်ဘဒါမရွေဘပေါပရဓာန်မန်ထရီနရန်ဒရမိုဒီနဟိုင်ရီလေဘာကစီကီနဟာစင်ဘူဒရက်ကမဒီနီရှာတကီလာပနလေဟန်နဘကီခုံဂျန်ဘိကစစ်ဘာရတ်ကီဒမတ်နာဆာမုတ်တယူဘလေဘာကစင်ဘထုံဘဒခုံဂျယ်ယန်နချန်ရှိလီआकाशवाणी की थोंगदे संदोकी बा महाकी मन की बात तोरमदा लाखली बहराव कुमई की मतमदा लेबा कसिदा छाजबो पलम सिंह छिजिन नबशु श्री मोदी न हाइदी प्रधानमंत्री नंगसी ताशकेंट उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति के तोंगान तोंगान बहिरम द वरी शानगनी अमशुंग ईसा की तेंगबांग की पलम मेट्रिक टन तारामाथोई पुब भारत की मरी शुभ एरोप्लेन काठमांडू दे थुंखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी लैबाक असी की नहा सिंबु ड्रग कमदी निशा देगी लाप न लेहन्ना बगी खोंजंग बिकसित भारत की दमक नासा मुक्ति युवा लैबाक सिंबे थोंबद खोंजल यांग ने चंगशिली हाउजिंग है कि ममांगदा आकाशवाणी की थोंगदे संदोक की बा महा की मन की बात थोरम द श्री मोदी ने हाई खोंजंग असिना नहा सिंग की हक्सेल मखोय की तुंगी नुंगाई याइफब पुंशी अमा ओहन्ना बगी फिरेप लौमिन हल्ली मांग हाई निशा दलाई शूर बाहे बेशिना शुभनगी मियोई अमखक्ते दे नतना माकी मुंग मनुंग अमशुंग खुनाई दे साउन कुदोंग ज्यादा बमायोक नहले ड्रग फ्री इंडिया अम ओहेन्नबा क्रिएटिव ओइबे थबक सिंग अकनबे स्लोगान सेमबा मसीगी मेसेज पीबंगंबा इशय यमदी शॉर्ट प्ले नसिंग बपुथोक नबशु प्रधानमंत्री नमरी लेनबशिंगदा आपिल तौरी
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं।
0: श्री मोदी ने हाई अगस्त थाना लाखपदा मियोई कुदिंगी थमोई द मरे बाकनिंग बगे वाखल हेंगल हल्ली अमशुंग हर घर तिरंगा की खुंजंगना मसीबू अमुक हेना मराचे सिल हल्ली मांग न हाई तिरंगा की कुमई असी सुपनगी भारत तद नतना मालेम पुंबदा सूर्य पर्थ तिरंगा हाइन पालन तौरी प्रधानमंत्री नहाई मालेम पुंबदा नुमिना असुम असुम वांखलक पग लोइनना भारत की मसू अहुंग की फिराल सु मका लाम न पाई बा होरकली मसिना अइकोई की खुनाय असी बु अमतोइन पुंशिल हली श्री मोदी नहाई पीएम स्वनिधि योजना ना अपिक पमखल की कारोबार तौजरी बनु पीसिंगदा अनौ वथौना हापले मांग नहाई लैबाक असगी नुपी ला कुंत्रा मंगारोम ने स्कीम मसी काना बफंगदुना तोंगान तोंगान बमखल की कारोबार सिंग तौरी मसिना नुपी ओइबी सिंगी थौना लिंगजेल हपकतुना मदे मसाना मसाबु थाजा हनबंग अमहनदुना मखोइदा अहेन ब शक्ति लेहले अइखोई की चनबी मसा अमना पुंसी द चाउना माई पाक पहाई बदु ओहेन बया

0: थोक न कोई न तुम ठहरो रब माले कदाई दनो कदाई दनो ऐन लाई रिब मफ़म सिबो
1: हाँ हरे हंदकती तिन सिये लो ऐन शिरमनी
0: अतो का करीगी नो ऐ यहाँ जांगसी ना इचोन चोन थरी बसिबो दादा होइ ना कदाई दले इखर बजानो दादा दादा ना कोई बुक दाई दले बगे दादा
1: ऐ बु ऐ बांग मरी सिदगा हिंग बा ताचिन बदी याव दर बजाल ने ऐ बु खो तो ओग मु यिंग की गदर ने
0: कहीनो कहीनो मा कोई अमत ना कुम लक्षी बसे मतक तो लाई री बा अहो बसी लाम का ऐ ऐ तक खट पंगम रही यंग के
1: कोबी मखोक्षी अमु खोटोक लूरा बदी लोएन मक पत्था के बता रहे कया अम्बु हिंगलम दो इनो दा नशी दी लोशल लगे
0: कहीं ना ऐ के कोंग से थांग बतोक चिपसी बो दादा दादा नॉइ मक कदाई तो लाई बगे ऐ ऐ अम्बुआरी दादा ऐ की सुकीरी दादा ऐ बुलाओ बुला मुक्तला कियो ऐ पुक्सु याम नलामे न कोई बुकसाई दिलाई बगी दादा
1: नशी दी कोबी सिंह से येंगो फजरे नुमी हमनी मरी नहीं लगा गा दी लेन में सोए तो यार गनी अतुगा अमु हवाई अमु थाजन भाई बितो दी
0: ऐ अशुम न सोंधा तो न लाई रबते मापान यो बंगम लरोए लाई बाक्षिता लाई बाक्षिता नप्पन नप्पगा मापान तदी यो न बहुत न रखे
1: ची यो रबती खुद साजे इधा काफ़ बोगी अमु तो चांटु कीगे
0: यस कहीनो कहीनो तारु मी बंबत दोषी थी दादा आई न हो री बा न कोई की सक्तम सी बुक करी नो दादा दादा हाउ गलो दादा हाउ गलो नमित पांग लो दादा आई आई पुक्षी हम न लामे न सेल न कपी बसी बुतादर ब्रो

शुक्रिया नील श्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और सुनते हैं आज का गीतमाला कार्यक्रम आपकी रेडियो दोस्त थोकचोंग गीता के संग आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल 103.5 MHz पर।

दोस्तों आज है रविवार और हमें पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं संगीत धमाके का। तो दोस्तों सुनते हैं ये पहला संगीत धमाका गीत जो प्यार का एक एहसास। जब पहली बार होता है तो हर लम्हा खास लगता है। ऐसे ही एक खूबसूरत एहसास को आवाज़ दी है जावेद अली ने, कुमार के लिखे शब्द और रोचक कोहली के दिलकश संगीत से सजा हुआ एल्बम।

दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसने हर दिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिल्म एक दीवाना था का सुपरहिट गाना, एआर रहमान के जादुई संगीत, जावेद अख्तर के लिखे हुए बोल और लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत सुनिए।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाचकर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो।
1: और अब एक ऐसे फिल्म का गीत जिसने इतिहास रच दिया। राजमौली जी के शानदार फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग से एमएम करीम के संगीत और मनोज मुंतशिर के शब्दों में नीति मोहन और काला भैरव की आवाज़ में पेश है ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के एफएम संगाई चैनल से संगीत धमाका। तो दोस्तों, और अब मौसम को थोड़ा रंगीन करते हैं। दोस्ती और मस्ती भरे अंदाज में फिल्म कॉकटेल से प्रीतम के जबरदस्त म्यूज़िक में नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ों में ये खूबसूरत गाना सुनिए।

दोस्तों, इंतज़ार, भरोसा और लौट आने का वादा, इस एहसास से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं। ऐसी ही एक खूबसूरत दास्तान लेकर आए हैं ये अगला गीत। बोल इशात कामिल के हैं, संगीत AR रहमान का, और इस एहसास को अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है दीपाली शाही ने। फिल्म मैं वापस आऊँगा।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर अब सुनते हैं जावेद अली, इरशान अशरफ और शब्द के आवाज़ों में ये गीत तुम मिले से। गीतकार है सैयद कादरी और संगीतकार है प्रीतम।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का संगीत धमाका अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगना चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

गीतमा लागि थौरम ताभिरे इ पाउ लीला ड्रामा इसै तोङान तोङान बा थौरम सिंह असन लैच लोइजुन सेमजरीबा आकाशवाणी इम्फाल गे संगाई च्यानल नि अदुम न ताभिरि बसे लेप्त न ताभियो नुङाइ न ताभियो पुंफम असि दादुम गि दमक पुजरकली तोङान तोङान बा अरिब मणिपुर फिल्म मदि मदम इसै सिंह खुदोल गिहान बोइन लोक चरिबासी अरोइब बिदाय फिल्म असिदगि कुंजोय कुमार मास्टर जयानंद मदी सुनीता गे पुनब खोंजलदा एम के जितने सैरिंग बमदी कुंजोय कुमार ना सैरंग बेसे खुदोल तमचरी तमिनसी

0: ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯂꯩꯆꯜ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯅꯥꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯌꯨꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ. ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯨꯜ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ. ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ NIFTꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ NIFT ꯀꯦꯝꯄꯁ 19ꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯌꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ. ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯔꯂꯝꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ. ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯂꯥ ꯄꯨꯖꯥꯗ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯀꯣꯕꯨꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ. ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯕ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ 14 ꯄꯨꯕ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯥꯠꯃꯥꯟꯗꯨꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ. ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯈꯨꯗꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ 57 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝꯗ ꯅꯦꯄꯥꯜꯗ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ. ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯟꯁꯨꯛ ꯃꯥꯟꯗꯕꯤꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯐꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯟꯗꯦꯁ ꯑꯣꯟ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒꯤ 49ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯇ ꯚꯥꯔꯠꯅ T20 ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯞꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯁ ꯉꯁꯤ ꯗꯨꯕꯥꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ. ꯃꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ 9:30 ꯍꯧꯒꯅꯤ. ꯍꯔꯃꯟꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯀꯧꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ. ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ.
0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ. ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯏꯪꯒ꯭ꯔꯥꯖꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. In his Mann Ki Baat program, Prime Minister Modi highlights women empowerment through PM Swanidhi, says 35 lakh women benefiting from the scheme. Prime Minister highlights Mission Shakti Sat as a platform for 12,000 girl students from 108 countries to learn satellite technology and pursue innovation. Prime Minister Modi appeals youth, musicians and content creators to develop jingles, slogans and content for Nasha Mukt Bharat campaign, says campaign gaining momentum across the country. Death toll from flash floods in Nepal rises to 734, nearly 2,500 people still missing. India sends fourth relief flight carrying 11 tons of humanitarian aid to Nepal. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued for Odisha today. And defending champions Germany to take on Spain in the men's FIH Hockey World Cup 2026 final in Wavre, Belgium this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is holding a bilateral talks with President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in Tashkent today. The two leaders are reviewing cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. MOUs in this regard are expected to be signed today. Today, Prime Minister Narendra Modi first attended a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan and later he reached to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where he was given a ceremonial welcome. And now, both the leaders are participating in the bilateral talks. Prime Minister Narendra Modi has said that the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign is gaining momentum rapidly across the country. Sharing his thoughts in the Mann Ki Baat program on Akashvani this morning, Mr. Modi expressed happiness that the campaign with the goal for drug-free youth and a drug-free India is not merely a formality, as many people, especially the youth, are joining it in large numbers.
3: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्ज्वल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
2: The Prime Minister said drug addiction does not just engulf a single individual, but the entire family and society bear the consequences. He commended those who raise awareness against drugs and step forward to help individuals struggling with addiction.
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाए जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
2: The Prime Minister said lakhs of women are gaining new strength through the PM Swanidhi Yojana. He said this aspect of women empowerment is not discussed as much as it should be. Mr. Modi said women account for approximately 46% of the beneficiaries of the PM Swanidhi Yojana.
3: PM Swanidhi Yojana ki labharthiyon mein karib 46% mahilaen hain. यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
2: The Prime Minister said cleanliness has a remarkable quality. He said when the resolve to keep a place clean becomes the people's own commitment, it completely changes the identity of that place.
3: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
2: Mr. Modi said today the flight of the country's daughters' dreams is soaring from the earth to the outer space. He said India is bringing together thousands of daughters who are nurturing such dreams from across the globe. The Prime Minister said the initiative is named Mission Shakti Sat, and through it, 12,000 girl students from 108 countries are getting the opportunity to learn satellite technology in the field of innovation.
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
2: Mr. Modi spoke to Krishna Sheshadri from Mumbai, who has created a unique website, www.bharatraja.com. By selecting any year in the website, people can easily find out which ruler ruled over which part of India at that time. He said this initiative by Mr. Krishna will help not only the history students, but also the people to learn about the past in an engaging way. The Prime Minister said the month of August brought with it myriad

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुथिल की पुंग अहुम तारक पगलोइनना मणिपुरी पाव ताबिरसी।
1: आकाशवाणी इम्फाल वहेमगुम वाशिंगटन पाव पाजरी। मुख्यमंत्री युमनाम खेमजान सिंह राज्य की कांगलुप खुदिंगमा बंद और ब्लॉकेट तौदनब अपील तौरी। न्यू दिल्ली की दमक इम्फाल थादोक लमदाई मुख्यमंत्री ने हाई दाबी दक्षिणब बंद नत्रग ब्लॉकेट कौबना पामदब हिंसा की थौदोक सिंग थोखलप याय मरमदुना गणतंत्रिक मोंग खोंजंग चंगसिन्नब श्री खेमजान हाई राज्य सरकार केंद्र सरकार मणिपुर की मियाम की अनिंग पाब सिंग थुंगनब होनगनी मांगना हाई बंद कौबना कानब पोरकलोय मधुकी महुता मियाम हेन वाहनगनी। श्री खेमजान हाई बंद तौबद मरुओं मांगजरीब नोमगी खुचुमन तांजब मियोई महिरोई सिंग तुंग खुनाई की युम्बी सिंगने हायरदुना राज्य असिगी महिरोई सिंगे अकादमिक कैलेंडर दा छोखंदनबसु मागना मरी लेनब खुदिंगमक्ता अपील तौरी। आइन कायब मौंग खोंजंग चंगसिन्दुना चरांगनब फिवम थोखन्नब होनब सिंगी मथक्ता अहक थबक लौखत्कनी हायनसु मुख्यमंत्री ने हायरी। माकी दिल्ली खोंचद असिदा केंद्र की मकोक थोंब लुचिंबसिंग उनदुना राज्य असिगी तोंगान तोंगानब वाफम कयागी मतांगदा वारी सानगनी हायनसु मुख्यमंत्री ने फोंदोखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायरी लैबाक सिंब तुंबद विकसित भारत की दमक नासा मुक्त युब की खोंजंग खुमांग यांग चंसिली। आकाशवाणी की थोंद संदोखी की मन की बात थोरम श्री मोदी ने नहा सिंब ड्रग सिजिन्नदब ड्रग फ्री लेबाकब की पांदम चंसिलब कैंपेन मियाम मरुओं नहा सिंह चांग वांग सरुक यारकली हक्चांग फबा नुंगाई याई फबा पुंसीबी माइकई चंसिब अपुब वारेबरी। प्रधानमंत्री ने हाई ड्रग निशा सिजिनब मई मसा खत नतना इमुंग मनुंग खुनाई चाउन अकाब थोखली निशा ड्रग सिजिनब की मायोग चंसिलब मिपुम खुदिंगमकु श्री मोदी ने थागत्प फोंदोकली। श्री मोदी ने मियामद ड्रग फ्री भारत की अकन्ब इहुल पीब स्लोगान पाउजेल पुब इसई पुथोक्नबसु अपील तौरी।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री

0: ဒီနေ့ဟိုင် PM 70 योजना की मखादा नुपी लाकयादा अहेन बसक्ती पीरी मांग नहाई योजना सिगे अपन ब बेनिफिशियरी सिंगी चाद निफुटा रुक्लोम दी नुपी सिंग ओइरी लाइबा का सिगे नुपी लाकुंत्रा मंगा रोमदा स्कीम मसिगे मखादा तोंगान तोंगान ब मखल की कारोबार सिंग जथरी हाइनशु मांग न मखाता की केंद्रीय यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने न्यू दिल्ली दा फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की मारफुनिफान सुबह एडिशन शुरू किया करे मणिपुर दशु खेलेगा भारत जीतेगा भारत हाइवे टीम दा नुमित हुमनी चतरक पर नेशनल स्पोर्ट्स डे गमरी लेने नंगशी संडे ऑन साइकिल की थोरम पंक्तों करे साई एसटीसी कुमार लंपाक इंफाल नचिंदुना इंफाल के कुमार लंपाक तकी लंथारगा नॉर्थ एओसी चिंगमाइरोंग मंत्री पुखरी खाब्रम लंखाई फाउ दुन चलगा हाइंगांग द लेबा इबदो मार्जिन खुबम द लमथुंगफम ओइकिबा साइकिल रैली अदु यूथ अफेयर्स समसुंग स्पोर्ट्स विभाग के सेक्रेटरी नाउरेम प्रबिन्न लमथाकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना न्यू दिल्ली द हयन पंगथोकदबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT गि अपुन ब कन्वोकेशन द शरुक यागनी थोरम दुदा लैबा कसि गि अपुन बा NIFT कैंपस तारा निपाल दगी ग्रेजुएट लोयरबा माहिरोय सिंगदा मखोय गि डिग्री पिगनी थोरम दुदा केंद्र गि टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से शरुक यागनी नुमित निनी की उज्बेकिस्तान कोंचत लेरीबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी लैबाक अदुगी राष्ट्रपति गो उनदुना तोंगान तोंगान बलम द तेंबांग पिना बे हेंगत हनबगी मतांग दो वारी शानखरे भारत अमसुंग उज्बेकिस्तान लैबाक अनियसी ममांगै देगी हौना चेत पमरी लैनर ए अमसुंग लैबाक अदुगी मियामना भारत की संस्कृति मरुओइना बॉलीवुड फिल्म सिंग इसै सिंग योगा हिंदी अमसुंग लैबाक असिकी तोंगान तोंगान ममखल गि चिनजाक सिंग पामन लौनै उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नुमित निनी की कोंचत्ता नसी केरलम दा चटकनी पाव लुजरे
1: आकाशवाणी इंफाल हौजिक अमुक लांथुक चरी अंगांगी थौरम

ওই হা সাগল উদা থইবি ইপান ওই বুলাওগে সাগল উদা সনাহল

मखल मथल की थोरम कया संधुक्तुन तहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल ने लेप्त नताबियो नुंगाई नताबियो लौशिंगी पुकई न थल्लबा आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल पुंखमसीदा अदुमगी दमक पूजा रखली रेडियो क्लास चमरी हुमरानी थुई सुबह टांगकता क्लास सेवन की लेसन नंबर 19 सब्जेक्ट ना हिंदी थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ए समग्र शिक्षा मणिपुर ना पुथोपनी

0: नेहा, अरे पढ़ाई करने के लिए कहा था ना, क्या हुआ?
1: कुछ नहीं हुआ, चूजों को दाने दे रही थी।
0: फिर
1: अब हो गया, ये नहीं डालती तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी।
0: पढ़ाई करने और चूजों को दाना देने में कैसा संबंध? पढ़ाई क्यों नहीं हो पाएगी?
1: भूख के मारे चूचे चूचे करते रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? अब तो चुप हो गए ना।
0: हाँ
1: आओ माँ, पढ़ाई करते हैं। अब कोई अवरोध नहीं होगा।
0: चलो पढ़ना क्या है, विषय का नाम तो बताओ।
1: कबीर के दोहे हमारा विषय है।
0: रुको नेहा, कबीर के दोहे पढ़ाने से पहले कबीर के बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ, ध्यान से सुनना।
1: हाँ माँ जरूर, ध्यान से सुनूंगी।
0: कबीर का जन्म सन 1398 में काशी के लहरतारा नामक गांव में हुआ था। कबीरदास भारतीय साहित्य इतिहास के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। वह भक्तिकालीन कवि थे, इसलिए भक्तिकालीन विशेषताओं का प्रभाव उस पर पड़ा। उन्होंने अनेक प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी दोहे की रचना की। उनका जन्म आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
1: उनके बारे में भी सुनाइए ना माँ।
0: हाँ जरूर, हाँ सुनाती हूँ, सुनो। लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें।
1: सब्र नहीं हो रहा, जल्दी सुनाइए ना।
0: माना जाता है कि वह एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। तत्कालीन रीति रिवाज भी बहुत कठोर थे। लोग लाज के डर से अपने बेटे को खुद पालना उसके वश में नहीं था, इसलिए उसने उस बच्चे को एक तालाब के पास छोड़ दिया। ईश्वर की लीला अपरंपार है। एक मुस्लिम जुलाहा दंपति वहां से गुजर रहे थे, तभी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़कर देखा तो एक नवजात शिशु तालाब के किनारे पड़ा मिला।
1: ओह, कितने कठोर हृदय वाली माँ है। एक नवजात शिशु को वहां छोड़ दिया, कैसी माँ थी। हर माँ तो अपने बच्चों के लिए जान तक त्यागने को तैयार रहते हैं।
0: नेहा कैसी बातें कर रही हो,

0: की बच्ची हो, कुछ भी नहीं जानती। मनुष्य एक समाज के अंतर्गत रहते हैं। समाज के कई नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना मनुष्यों का कर्तव्य होता है। इसलिए उस समय विधवाओं का जीवन बहुत कठिन होता है बेटा।
1: ओह, अच्छा, ऐसा भी होता है।
0: हाँ,
1: अब मैं जान गई हूँ, आगे सुनाइए, इंतजार नहीं हो रहा है।
0: चलो देखो, ईश्वर की लीला कौन जाने, इस नवजात शिशु को मुस्लिम दंपति अपने घर ले आए और उसका लालन पालन किया।
1: ओह, ऐसा।
0: हाँ, कबीर के जन्म के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। उन दोनों दंपति का नाम नीरू और नीमा था, वे दोनों बुनकर थे।
1: माँ, क्या कबीर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था?
0: नहीं, वे अनपढ़ थे। लेकिन उन्होंने कई रचनाएं रची। उन्होंने मानव जाति को एक साथ प्रेम से रहने और भेदभाव रहित समाज की कल्पना करते हुए अनेक पद लिखे।
1: माँ, कबीर के बारे में अब थोड़ा कुछ जान गई हूँ, तो उनके दोहे भी पढ़ाइए।
0: हाँ हाँ, वही ठीक रहेगा। अब सुनो, कबीर के एक दोहा पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार द्वे संचारे, सलत सकल शरीर।
1: वाह, सुनने में कितना कोमल और मधुर लगते हैं। इसमें निहित भाव को भी समझाइए माँ।
0: हाँ, कबीर दास जी कहते हैं, मनुष्य को अपने अहंकार अर्थात घमंड को त्याग कर ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को शांति और सुख मिले और साथ ही स्वयं के मन को भी शीतलता तथा आनंद की अनुभूति हो। मीठे वचन औषधि यानी दवा के समान होते हैं, जबकि कड़वे वचन तीर की तरह होते हैं।
1: तीर?
0: हाँ,
1: यानी कि वो एरो।
0: हाँ, तीर, एरो, जो कानों के रास्ते जाकर पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि सभी मनुष्य कबीर के बताए मार्ग पर चले तो सारा संसार स्वर्ग के समान बन जाएगा।
1: माँ, हाँ? मधुर वाणी औषधि के समान है, अर्थात दवाई खाने से बीमारी दूर हो जाती है ना? उसी प्रकार मीठे वचन सुनने से मन में भी आनंद के फूल खिलेंगे। माँ, क्या मैंने सच कहा?
0: हाँ बिल्कुल, मेरी बच्ची बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बीच में एक गलती कर दी।
1: अंतिम वाला पंक्ति है ना?
0: हाँ, वही वही, मधुर वचन औषधि यानी दवा के समान होते हैं, जबकि कटु वचन तीर की तरह होते हैं जो दिल को चोट पहुंचाते हैं।
1: ओह, अब समझ गई हूँ, तीर से चोट लगने का अर्थ फिर से समझाइए माँ।
0: इतनी सी बात नहीं समझी, बताती हूँ।
1: हाँ माँ, समझाइए।
0: उसका मतलब दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने वाली बात बोलना, इसकी तुलना तीर से लगने वाली चोट के साथ की गई है। दूसरों पर तीर मारने से क्या होता है, एक छोटा सा कांटा लगने पर भी माँ कहकर दर्द से कराहते हैं।
1: वो तो है,
0: तीर लगने से इंसान मर भी सकता है।
1: मेरी माँ तो ज्ञानी निकली, अब मेरी भी समझ में आ गई है।
0: हाँ,
1: अब आगे सुनाइए माँ।
0: सुनाती हूँ, ये भी एक प्रकार के सुंदर दोहा है। इस पंक्ति के अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसलिए कबीर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। उनके लिए भेदभाव जैसी कोई बात नहीं, वे दयावान व्यक्ति थे। वह सभी मनुष्यों को एक समान देखते थे।
1: माँ, हाँ? अगर सब मनुष्य उनके समान होते तो कोई झगड़ा नहीं करता,
0: हाँ?
1: सारा संसार शांति से भर जाता, है ना माँ?
0: हाँ, ऐसा चाहने से भी तो संभव नहीं होगा। युगों युगों में कभी कभी ही ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। वे भगवान के अवतार लेकर संसार में जन्म लेते हैं। अगर सब मनुष्य उनके जैसे हो जाएं, तो हमारी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। अच्छे और बुरे दोनों मिलकर ही ये संसार बना है।
1: माँ, हाँ? क्या ये सच है कि कबीरदास एक गरीब घर के बेटे थे और उनकी जीविका का मुख्य साधन बुनकारी था?
0: हाँ, बिल्कुल सही है बेटा।
1: ओ,
0: देखो, कबीर के माता पिता दोनों बुनकर थे। कपड़े बुनना उनका पुश्तैनी काम था।
1: ओ,
0: इसलिए कबीर भी कपड़े बुनने का काम करते थे। इससे संबंधित एक कहानी भी है।
1: कौन सी कहानी है? वो भी सुनाइए माँ।
0: हाँ, सुनाती हूँ, सुनो। कबीर अपने माता पिता की सहायता करने के लिए खूब मेहनत करते थे। वे अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करते थे। दिन रात एक करके कपड़े बुनने का काम करते थे। एक दिन तो आधी रात तक कपड़े बुनते रहे। थकान की वजह से उनकी आंख लग गई। उनके सपने में एक दिव्य आवाज के साथ आकाशवाणी सुनाई दी।
2: कबीर, क्या तुम बहुत थक गए हो? थोड़ा आराम कर लो। आज के लिए तुम्हारे ये कपड़े में बुन देता हूं।
0: ये कहकर वह वाणी शांत हो गई। जब कबीर दास की आंखें खुली तो देखा कि उनके सारे कपड़े बुनकर तैयार हो चुके थे।
1: ओह, ऐसा क्या?
0: हाँ, ये देखकर कबीर आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने प्रभु की वंदना की। ये सारी बातें कबीर ने अपने माता पिता को बताई। वह दोनों भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वास्तव में इतने सारे कपड़े बुने हुए पड़े थे। तीनों ने मिलकर अपने प्रभु की आराधना की।
1: माँ, हाँ? कहा जाता है कि वे एक प्रसिद्ध कवि भी थे। वे दोहे भी लिखते थे और अनेक प्रकार के प्रसिद्ध काव्यों के रचना भी करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब वे एक प्रसिद्ध गुरु को अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन जब वे उनके शरण में गए तो गुरु ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया और वहां से निकाल दिया। फिर भी उन्होंने किसी और को अपना गुरु मानने के बजाय मन ही मन उन्हें ही अपना गुरु मान लिया। उस गुरु का नाम रामानंद था।
1: फिर आगे क्या हुआ माँ? उन्हें तो गुरु रामानंद ने निकाल दिया। कबीर तो गुरु रामानंद को ही गुरु बनाना चाहते थे।
0: उसके बाद कबीर ने धैर्य और श्रद्धा से काम लिया। कबीर सोचते रहे कि एक बार गुरु रामानंद जी का दर्शन हो जाए। एक दिन अचानक उनकी गुरु रामानंद जी से मुलाकात हो गई।
1: कैसे? रामानंद जी का दर्शन कैसे हुआ?
0: ऐसा हुआ, एक दिन सुबह सवेरे जब अंधेरा और रोशनी का मिला जुला समय था, तब जैसे ही रामानंद जी गंगा स्नान के लिए निकले, कबीर दास जी उनके मार्ग में गंगा की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही रामानंद जी ने गंगा की सीढ़ियां उतरना शुरू की, उनका पैर कबीर पर पड़ गया और अनजाने में उनके मुख से राम राम के बोल निकले। कबीर जी का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और गुरु मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। कबीर ने इसे ही गुरु दीक्षा मानकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। बाद में रामानंद जी ने कबीर की भक्ति और निश्चलता को देखकर उन्हें अपना प्रमुख शिष्य बना लिया।
1: इसका अर्थ है कि निश्चल मन के साथ धैर्य से काम किया जाए तो सब संभव है, है ना माँ?
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी।
1: करूँगी माँ।
0: अब तुमने सुन लिया ना कि कबीर ने कैसे धैर्य के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त किया।
1: हाँ माँ। माँ,
0: हाँ,
1: आपके इस अनमोल उपदेश को मैं हमेशा याद रखूंगी। अब आगे की कहानी सुनाइए।
0: आगे ये है बेटा, कबीर ने अपने मन में आए विचारों को वाणी का रूप देते हुए उनके शिष्यों के सामने व्यक्त किया। उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को काव्य के रूप में लिखा। उनकी समस्त रचनाओं के लेखन उनके शिष्यों ने ही किया। कबीर भेदभाव को नहीं मानते थे। उनके शिष्यों में हिंदू मुस्लिम सभी जातियों के लोग थे। उनके समक्ष सभी धर्म एक थे। अब उनका एक और दोहा पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दउ खाड़े काके लागेन पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सदगुरु संचा सुरीमा सबद जू बहिया एक, लागत ही में मिली गया पड़िया कलेजे छेक।
1: माँ, हाँ? कबीर के सभी दोहे बहुत ही सुंदर है।
0: हाँ,
1: वे ऊंच कोटि के कवियों में से एक है। इस दोहे का भाव सरल रूप में समझाइए। मैं तो बच्ची हूँ, जटिल शब्दों का अर्थ मुझे समझ नहीं आता।
0: हाँ हाँ, समझाती हूँ। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दउ खाड़े काके लागेन पाए, इसका सरल अर्थ है यदि गुरु और भगवान यानी गोविंद दोनों एक साथ सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, अर्थात कबीर दास कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्योछावर हूँ क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का मार्ग दिखाया और उनसे मिलवाया। सद्गुरु सांचा सुरिमा सबद जू बहिया एक। अब इसका सरल अर्थ है सच्चा गुरु एक वीर योद्धा के समान है। वह अपने ज्ञान और उपदेश का एक ही बाण चलाता है। लागत ही मैं मिली गया पड़िया कलेजे छेक, अर्थात गुरु के उपदेश का बाण लगते ही मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। वह मेरे हृदय में गहराई तक उतर गया और मेरा अज्ञान दूर हो गया।
1: माँ, आपने कबीर के दोहे अच्छी तरह स्पष्टता के साथ समझाया। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ।
0: बहुत अच्छा, पूछो। अगर मेरी जानकारी में होगा तो जरूर बताऊंगी।
1: कबीर के जन्म के बारे में तो बता दिया।
0: हाँ,
1: अब उनके मृत्यु के बारे में भी बताइए।
0: नेहा
1: जी माँ,
0: मैं भी उतना नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में लिखी हुई पुस्तकों और विद्वानों का कहना है।
1: आपको जितना पता है वही बताइए।
0: हाँ,
1: मैं सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ।
0: हाँ हाँ, तुम्हें जानना है ना, बताती हूँ, ध्यान से सुनना।
1: जी माँ।
0: कबीर की मृत्यु को लेकर एक प्रसिद्ध चमत्कारिक कहानी प्रचलित है।
1: चमत्कारिक?
0: हाँ, उत्तर प्रदेश में मगर नामक एक स्थान है। 15वीं शताब्दी के समय वहाँ एक अंधविश्वास प्रचलित था कि मगर में मरने वाला नरक में जाता है और जो भी मगर में दफनाया जाता है वहाँ वह अगले जन्म में गधे के रूप में जन्म लेता है।
1: अरे,
0: इसलिए उन दिनों लोग मगर में मृत शरीर दफनाने से बहुत डरते थे।
1: ओह, क्या कबीर इस बात को मानते थे?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कबीर ऐसी सोच के कट्टर विरोधी थे। वह इस प्रकार के अंधविश्वास को पूरी तरह मिटाना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मगर जाने का निर्णय लिया, ताकि वहां व्याप्त अंधविश्वास को तोड़ा जा सके। जब मगर में उनकी मृत्यु हुई, तो उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों के बीच उनके अंतिम संस्कार की विधि को लेकर विवाद हो गया। हिंदू उनका दह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। इस प्रकार उन लोगों के बीच विवाद चलता रहा।
1: ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, आगे सुनाइए माँ।
0: आगे सुनो तो सही। कोई एक कुछ कहता था तो कोई कुछ और कहता था। विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहा जाता है कि तभी वहाँ एक व्यक्ति ने कबीर के पार्थिव शरीर से चादर हटाई तो सब चुप हो गए और आश्चर्य में पड़ गए। सब के सब हैरान होकर देख रहे थे।
1: ओह, क्यों माँ, सब हैरान क्यों हुए? कबीर नहीं मरा क्या?
0: नहीं, कबीर का मृत शरीर गायब हो गया था।
1: ओह,
0: उसके बदले वहाँ सिर्फ फूल मिले।
1: अरे,
0: इसे देख सब घुटनों के बल बैठकर कबीर को नमन किया। इसके बाद दोनों समुदायों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। आज भी मगर यानी जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ संत कबीर दास जी की एक समाधि और मजार दोनों अगल बगल मौजूद हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं।
1: माँ, लोग जहाँ जाना डरते थे, वहाँ आज भी उनकी समाधि और मजार दोनों मौजूद है ना?
0: हाँ, तुमने बहुत सही कहा बेटी। आज इतना ही पढ़ते हैं।
1: ठीक है माँ।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मखल मथेल की थरों कया लांथोक्तुना तहनचरी बस या आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दिगिनी हौजी पुम्फम सिद संतोकचरी सुमांग लीला नुंगशिबगी सायोल इलासीगी अहन बसरु लीला सनबिरी बनहारोल खोंगथांग आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला कांगबू हौजिक ताबिरसी सुमांग लीला नुंगशिबगी सायोल अहन बसरु
5: मिकुप असिमकसु ओइ नंग एगि नुसिबसे मिरायगि हायन खनबिगनु
6: आइ आइ करि हायगेदबनो आइ हायफम खंद्रि
5: हायबिरिबसिबु एगि नुसिबसि सियार तो बुंगम मरोय हायबिरिब्रो
6: आदुम नाइबु नुसिबिरनबा आइ नपुसिसि दगाउजेरो आदुबु आइ पुसिदि इसाय तोमदा बुंगिंगि थाम नत्रगा थामोय आपामगि मखापोना सनिंग बलंबिदि ससन बगिनिंग तंबदि आई फम न थम जदि
5: हाइबी निङि दु बुकरिनो
6: आई लमदम सि मामा मपा ओइबे सिङि मसाइ गोन चाउ जबि सनु निङो लमन इमा मदि बाबा गि मायोक्ता इसा गि युम्बा लमबि सिम जने बगि दम निङ खा तम बदि आई फम थम जदि
5: ओ हाइबी रि बसिने दि एंगेजमेन्ट पामबि बगि वाफम निने
6: होय युम पान बलु होमबा खुदि म इमा बाबा मदि सने बगि मखा पोन पम थुक सगनि
5: ओ सने बि हाइबे सिना तो पवा पम मनि अदुगु नुंसिबा हाइबसिना अतोप वाफम मनि निङोलेमा आइ नंगि नफमदा आइ थमोगि असेंग नुंसिबसे नमांगदा लेपतुना पुनमक तमजरिबसिनि
6: आइखोइन सनेबिबि थवैदबदगि सनेबिगि वांगमदा आइखोइन मिराइरुबदगि आइखोइ पुसिसलाइ खाताना बिमासा अमोरलि शान्ति इमरि सुमबना आइखोइ इरकतगि नाथाइरकलि अनौ फिसना मय लौनरिबा अनौ सनेबि सुमा तौतमना भोनबदा आइखोइ इसागि सक्तम मांगना बिमासा अमोरलि
5: ओ आई पुनम भाव ताजरे होंदो उया ररोय द बनंगी पुनिंगी अरे प फिरे पदुगी मायोक्ता आयाक लेपसर रोय निओलेमा आई चलम दाई मत मसिदा सुमनतगी वापम अमतंग नंगी नफम द हाइजगे मसि मतंग दि नाक न हराव हराव न याबी को
6: हाइबी
5: नंगी नुक्सी बबु मांग द थमजरगा हौजिक आइन सथ जरीबा हिरम मसिदा आइन तमलिबे इहेसित मिकोक थोंमंगम ननबो होना जरुरगे मदुगी मतुंग द इसागी हिंगननबगी थबक अम पाइरब मतमद चनबिगी मतुंगिना आइखुगी अहलमन नखुगी युमद थाजरके ममो ओइनबगी दम हाइजा लगे मतम मदु फाउदंगदी नाक आइबुंगाइ बिरमुको
6: नायरमगनि
5: यामन नुवाइजले अदुदि आइम ससरगे सोइदन दिङाइ बिरमुको
6: नायरमगनि
7: जरियोजा
2: 야래.
6: 오사, 아이나 해봐, 밤도.
2: 나나 아이들까리나.
6: 세임 막 저거 이건 보스도 비유 해도 오사다.
2: 에이, 너 이게 마통 거는 강도 못건 보스도 이바반데. 한우 당시들은 비에 소문도 이바반데니 강아라. 너 거의 런데디에 모든 송아니 아드니까이드나. 아이 아이네디에 고모도.
6: 꾸이래. 마니포르기 클래스컬 댄스하고 마니포르기 가실거야 신나통이. 마파마통이 마통이나 모던 댄스 크라컴 보스도 비요. 오사수 나크로이 통나바.
2: 서현비야. 이상해 어저께 미스게 된데디 차부 오카클리 에이 모두 롱 아이들도 기다가 아니냐 에이 오자구로도 많이 도이디 강아라 도이디 도자도 많이 도우는고 아이코 너네 사도리 시대 아마 품가라이 사도리바
6: 미스 머니풀 칸테스 니우자
2: 미스 머니풀 칸테스 아이코 너거 이게 미스터 머니풀 칸테스도다 이봐서 저거 이사비 아가들네 하
6: 스카다이 레와난다 코자스마 안데 외한 맞달라마 뭔가 마사다 타오뿐 맹게티 살라 토록버드도 보고 까다이디 기자고이노 미 아이기 시디 컨텐츠 댄싱드나 마마이데 메이크업 하잖아 떡슬라가 마마기 디자이너 싱드르네 남자금자 드레스 디자인 터가 토록리바 아이템 싱도자 아두기 아이템 아마 헤로르가 아마 홀드링기 마렉타 사락시드나 부자고이 뉴자
2: 오 사르면 마 자고에
6: 아이쿠네 아두금 부자고이도 오자리 또우드리 바스
2: 아이 우드리네
6: 아두금 프로그램도 잠도 우드리야
2: 오저담 와이르미냐
6: 자 두스마니 세프드니바
2: 그러마이나 에에에 오, 아드마이나
6: 응아오부응아오부라 괜히
2: 괜히 괜히 이 방아오디 이 방아오디 이사분은 시대는 파괴도보니 아 세세세 아두디 저거이도 능 사로이게
6: 아두디 하오르게 오자 오자 두 스마이 사이브두 시야가드로
2: 아두 파자브라 능 사리도
6: 가마이 사드노 자두디
2: 나근 예롬 마시다 티에코이드나 니 지드는 사오니 영예영예세 사오사오사오 영예영예세 세 잘하셔.

0: 车，
1: 稳妥。
2: 哎哎哎，稳妥。
0: 跟着稳妥。
2: 稳妥。
0: 你爸是加油打的呢，稳妥。啊，蒙白的皮龙的，这个啥个地雷是不？你爸加油打的呢，稳妥。
3: 走了走了走了走。哎，马路把里边么来？啥弄到我们的项目？那些都啥项目了？走走走走。
4: 啥？那一点项目给我。
3: 哦。
4: 我啥啥项目去给搞的的？
3: 项目了项目了。到底是什么？
1: 慢点慢点。
3: 那我先走了先。
2: 好的好的，稳妥。
3: 稳妥。
2: 好像给谁都不，隔离中的稳妥，还得下一个老路的呢。啊，新的马给皮龙给这个位置，我们到马一公车米了不啦？那开路的那 idea。
3: 马东，咱们啥地方可以要的？
2: 哎，好像几多？
3: 喂，马那给你当官不就得？还到底要得到底啥呢？是，稳妥，每个产业米看米，都得，没人没人得这个位置啥厉害的？
2: 啊，
3: 啊对对对，啊，刚波是倒闭还不就得？说刚波是独身不离的呐？
2: 嗯嗯嗯。아두고원도레바시대디나인남행시의제국의여자이보비아이들의세가까이는파울입니다
3: 원도원도
2: 원도방떠오셔떡철로누다
3: 간절원도아이의명도파로이마이의명도파는건이하이부도다헤아이는건포세떡천만이다
2: 응응응응
3: 아두원도랭지로라톡던락부니까리타바기니나
2: 예너야왕탕버시다미에모나기에는락부니
3: 아
2: 아르낭이동간마빠지해여러번씩다뽑는게이놈의놈토래이봐
3: 번도번도
2: 내가디꾸이래이번에는운낙히드립샤
3: 왜왜왜
2: 감독우리기는낭봐
3: 번도가이제농아이하이가들어와이하이가들아나나오는빈시죠마저밤웅나도나해야되나나림님래래
2: 이시이시
3: 꼭시도키브라주시대
2: 예
3: 번도도나아따이아도밤하기행나나봐봐
2: 이마시디앙앙디따니나이마시마홉사기마가옥티바시홉시파고할람들이네
3: 번도
2: 아이디마카타들이
3: 아유
2: 아산루피도헷라이히드바드기야도마카타키드라
3: 예예예
2: 나샤니파아니드소파캉차리로이노파레드나
3: 오야본도와이숨미네야
2: 산루피도마차감데다주는와이테다
3: 본도기디야니파가탄니네나타나니
2: 아니파가탄니
3: 모이디야가리가리심밤바이라바두가낭이다번에감감도르바감마이도르바
2: 이하이기디타벅도벤진방에벤진자레드나
3: 예예예
2: 마시나도메나농아이레다본도
3: 본도까마이나농아이시바
2: 에농아이베농아이리미니본도와이자니바안도
3: 아
2: 라이라이슈타마디로이레
3: 본도
2: 아사르카르기타벅가가디파이디아두부네라나이기에모이기에쉐빙뱅하이브라아두기에지아르멘오이리에
3: 예예예
2: 본도마이타벅시디자오그레본도
3: 본도
2: 사르카르기싸우러싸우러오피셜싱나파워더서비스론부게야드나라이뿌리네
3: 아아아
2: 그래서돈삐
3: 아
2: 미션버자저돈삐싸우래마이타박
3: 싸싸뿌부야바
2: 마니마니마니
3: 에아두디암카니니본도
2: 얌페이얌페이이샤니파아도모드나카라빵딱따위
3: 너
2: 목소리잠에
3: 오이오이
2: 마이움존톡는닝자카라바아두부네마야모드나아베나라스타에메타만근에는타도크레본도
3: 베나라스타
2: 베나라스타
3: 오이오이
2: 너무감도우리경도하이고있네야
3: 본도아이디마마나비스오나본네온도나스와르바자니다
2: 오
3: 자르비알도마조라리마카탐단드레
2: 어
3: 모이비에시도디파스도레
2: 아아아
3: 아나노비라이탐할레라게용기마띵단도빵이
2: 어
3: 자르비아도미두디라리마카자드리아도가이시범지스마얌밤저리
2: 오이니
3: 본도마빵게그란시나디부시지잉마데이노농아이테도본도
2: 쇼미네본도기샤노비아니니과
3: 오이니본도
2: 来考文图，
3: 该做的文图。
2: 哎，文图比我的是大了个。哎不，我们年轻人，
3: 该做的给你文图。
2: 哎，给一梦的，我里边来一点不波西
3: 啊，
2: 那给一梦是得来嘞。
3: 格里诺的文图，
2: 文图俺们比得比啥的？
3: 格里诺没文图能不？
2: 哎不，像你把俺给一梦把米呢？哎嘿，哎那看不到，像他对都，呀那还新奇不呢？能忙啊！我来提着了，说，以前的那伯伯，以前的弟弟，说了么也吧。
3: 嗯，本土哎呀，烧饼都好拉不啦呐。哎，
2: 可以弄呀。
3: 那对呀，烧饼都好拉不啦吧。
2: 可以烧饼弄呀。那以前的弟弟很多说，买一买新，咱们老一代那还的。哎，以前的爸很多说，钱多些嘞，么可以行不得弄来着了呢。啊，都是么特的，能哎说，他那个么罗阿里比你可以弄。
3: 么都有外头的呢，本土哎那大方干的些。
2: 可以干的弄呢。
3: 而且么，咱们不以前的比红火太大咯，么啥么，咱们太给比阿不咯。그럼마을랑가오분은내가있는농내로이들어난거
2: 오하하하하하하아니왜이래낭나도깐샤오리데에그림딱걸로라누아이는덮고바르나볼로이실라게
3: 아본도미기마떼는냐우엉박가도이밤지디아이사는비치다하이리니아이는아야범마담디게디나코이루엉박야로야하이드는미소가로나덩그라미네미
5: 사손나레세
3: 하이那些走一波了，不压得你还能不？
2: 谢谢。
5: 心里上头不利。
3: 哦，那些啥同业吧？
1: 会。
3: 因为因为，啥不有那八分的，让多哦，我们是落有。
1: 会不吧？
3: 所以那些你我来嘛些，一把说行的给你。
2: 有嘞嘛些，嘛些蛮好听的嘛些。哎，过来过来，一把下都比咯。
1: 从哪里八分？
2: 好好，过来个。
3: 温度。
2: 温度。
3: 不是啊，是你蛋的。
2: 嗯。
3: 蛋不是阿拉把这个弄来的。
2: 弄来的。
3: 一些弄来的。
2: 嗯。
3: 温度那还的，这蛋难炸的。
2: 还弄多一些。
3: 会会。我们肯定没温度，哎呀，这里
2: 温度，
3: 哎呀，白天这里
2: 也温度，
3: 晚上也
2: 温度，
1: 哎呦，快把都一起不？
3: 等下你温度，我一加的呢，我一我带下都是老，
2: 温度下来好冷的茶，
3: 哎，别嘛多加多，我把一加都不是老，温度，
2: 温度，
3: 啥干嘛是的，啥都来是了的呢，
2: 温度，
3: 温度冷就老老冷，
2: 温度，
1: 是的，我一把，可以把把身的平一把把平死，我脱了平的我一把，后生还那么话碰的不？哎，可以死了，我没话碰不的到位的。阿杜布，哎，可以写的，努西不是努西的不差吧？巴姆不是巴姆的不差吧？努巴姆来人呐，努没我的还去的，是扛着的，没话是讲他的。
6: 大毛，大毛，拉跟你挨着门，我再一个恨吧，我他们出门吧，拉出拉的吧，大毛。
7: 哦，没你干的，你这老我的巴姆。
6: 要来碰头说。
7: 哦。给到了，可以来了。
6: 该弄，咱们都不是该弄。我试试一搞，熟悉，你下先东西那个，咱们那拉皮的是可以弄吧？
7: 哦，secretary 星呢，给小星呢，那可以 money lender 买亚麻苗子，是不了不了个，啥啥行啥多，都不透彻了呢。哎，你 meeting 要为可以干那不弄呢？哎，弟弟，不透有破土呀，还能说一道苦个罗的。哎，你 meeting 要为得干可以弄？
6: 哎，咱们，咱们是卢红区的爸爸，没透透来的。
7: 没你干的，
6: 你得罗比西亚卢布尼呢？哎，可以的。咱们给别人的那边秘密都什么是坑了的？哎，可以你不脱去吧？别人的天朝给什么钱啊？多，咱们不他就不得给你。
7: 会会。
6: 我是咱们可以你别人那再来一笔不是？先请你不咱们会，先不是不农民兄弟弄来吧？啊，这个先不脱吧，可以你们通不通看看得不是？咱们给别人洗头面做么账嘛你？
7: 没你干的，能给我多得能干。哎，康爷，能把我们拉提上面么啥你办的？啊，这个哎，可以说，说我们的钱也没那心的不干不么你？好兄弟，好兄弟，哎，快给伊里巴伊拉姆达马斯个钱通伊皮巴姆达那拍的，哎，快呢，政府里卡马萨里马亚姆塔的基巴，龙钱潘马亚姆辛个多，政府呢马当在多罗皮托特不得给 ，collection 的哎快呢卡天不给完呢，阿罗那快给庞庞托帕钱给行销 ，interest 的款呢哎快给 account 他都没领了嘞，
6: 那伊拉给干对了，哎快给庞庞托帕 interest， 哎快呢账来呢庞德不达，哎快呢 financial 伊不干那么去搞你喏吧，
7: 你干的，
6: 哎那大木，大木快心里不投望钱，快要变的。没事的吧？懂得没你朋友多一个，哎，也是没话的个。
7: 爱讲讲没你干的，可有能没话的个一边？嗨嗨，能我懂不看大个的呢？那样没我打扰你个。
6: 该侬看大的，该侬看大的。哎啦，阿东我父母是没到别的个路的。
7: 没你干的。
6: 哎，旁边他们起码没当家的，比他们个没得个。阿婆我啥的打扰你，侬一个吧？政府阿个他们旁边的吧，不是行不行大的？哎，可以把我们那民族系的那帮起嘛顶多，阿你们连忙了吧？那那我可没想来多，脏脏坑个的不哩？
7: 哎，可呢嘛你干的，能个能给挖的，不干的闹你，从的好久就亏呢，别心头里吧，我们也是的，可以搞点土不坑么？么得嘞？哎，你海里吧，那可以把我们头部钱的行销，脏脏的 interest 可能可以 account 的连个里海里不是？能来帮我们打不米，我也不打不的，我是嘛卡打的，俺个打不输伢了，你你不我？
6: 那今天打么？打么那路红么打么打？打么给别人死的？咱们一讲的给，把利息给呀，拉开了拖起那个还不切，哎，咋不咱坑你呢？
7: 没你干的，
6: 啊，对的是那的，一讲的呢，谁个对呢？啊，对个，那个是呢，那都可能乱他的还不切，哎，咋不咱坑你？
7: 没你干的，
6: 那是曼尼普的 financial investment bank 呢，突然突然起来不切，那是没人咋不咱坑你 ？Within this month，
8: 啊，没怎么，你爸妈啥事呢？伢们干的啥了？偷钱是干的去呢？
7: 我不蛮看吧，俺个爹的。
8: 妈呢？路红没挖个巴拉米不是呢？
7: 没事呢，你看我。巴里些没事，我怕没做错事。爸爸都过来一下，都跟你海了没？
8: 爸爸的，他爸没事跟你海了没？
7: 哦，可以爸爸不？
8: 哎，说俺是那干的，俺不是打不得，也不弄挨
7: 着。嘿，没事，俺给他爸，你那看我海不呢？巴里也不能没做错事噻。那我那不下给俺们的爷爷来嘛？
8: 可以去弄。
7: 啊，可以弄呢。你那路爸妈，阿达嘛巴拉们的来等来不都给？妈给白下他个得不来不呢？妈的，可是阿婆啥说阿爷们儿你听我言，都觉得不呢？阿 aduda final exam nuk selak peruda phi khudi malo in clear to papa ma ne ma chi thi ma ire ine
9: adu ki ti kona ni
7: khang chale ma na ngai long ba sinaka khara hatu wa to panto ki basida man shower ne ai mo da pau pitra ba adu ki mar ta ma ri yum siam ning ja ba pau he ta ba ma ri yum ta na sel ka dori ba ada parikha la ru ga tholop da khang ja re sunu haidna baba ar soin haira ba khang re lai ma matam sida ekoi iram dam gi mi sing sina phatta ba ki sa angasi नोम नोम गया सुम सुम हेजल मुन्न खंथर उगा इरेपा इरम दम तन मुतन सल
9: इरेपा इरम दमबू नुमाइते हैं कदाई चेंदोरीबनो पुनम थिंगने बताबनी
7: करीगुंबा नंगना आई की लाटुना आई की अनोब महाव पीरमद्रबा अयाक इरेपा इरम दम लेमा लिपमद्रब सियाराबनी लेमा
9: करीनु ताक पीरिदबो
7: लेमा अयाकी से महाव याद्र पोसमुनी हे हेक मीय की पुनः की मरी से अर्थ हे खाते
9: तुपीरोसे कैसे लेते वफम सेरियसो
7: नो लेमा सीरियसोदे मीनबी गमतीमा वारीबसे इसा इरोमद वाखल नाते नहाकनी इनावीदी हई आई ना कना ले वफम से बबाब मीराब वफम नाते बबादीबली सा टेस्ट तौर लाने नंगना हंगी करी है कस नाब तेपे लाब अंग लागोद धमका तौरम तुम खांगी तुम लेहरीबसे नंगने इनावीदी तुम लेब साज नाते मेरे इथक्त वाख्रग अने तुम खाजनबसे
9: खांगदीमाबादी
7: नाइब ला खनगनो वहलिबे फंगली तीनर हम कामरप तौमीब बैंक की थौ पुरीब मैम सिंह अनौब आसा थौना यौनना सिंफम से खों थाजीब पुनबी अरब तारकले मैं थाद्ब लोन मैं लोन चा सें सिंगे का सेंफम खर सिंह बैंक से लेरी स्टाफ सिंह अरब लंबी हाँ थोड़ा अब प्रोजेक्ट मैं नाइन जो ओक थाउ प्रोफिट याद लोस चाद थर्टी टू फिफ्टी पर्सेंट ओके पुनः तौसे अनब थोड़ा मैं थोड़ा पाकत्गे नखो की नाक लेपुन इरम दम सुगी लेमाद हिंगमी
9: फरसे मैतमो नाइट वखल खनो पुनिंग्रा चाथोपीर इमुद निथी पोथाबीर
7: लोमा
9: खन
7: मदर पोथानी पर असारब कैथोरा
9: फरसे इमुद पोथाबीर कहीं चपीदरीबनों

0: 他说你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你你是你哎呀这是你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你的人你是的个大的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的爱你的个是我的哎呀我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢我的人呢啊都那地啊一说我一想那边是马尼普里山那地啊一说啊马路我的开开了一年啊
1: 干你对什么爸爸
0: 哎哎
1: 那我不对的吧
0: 一边妈一把一路给我看看你呢
1: 啊
0: 那么可爱的呢
1: 过年时候给老爸给我他的比如说
0: 哦谢谢谢谢
1: 比如
0: 谢谢谢谢谢因为要不然你就听个你就听个你就
1: 听
0: 个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就
1: 听个你就听个你就听个你
0: 就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你
1: 就听个你就听个你就听个你就听个你就听个你汤的哈托
0: 给别送别送别送都一点点我是没有给我是那个新闻的那个人都给我一马还把名字是的呢快点路的问题因为这个地方我可以是那第二个把书的我不打不说那个的说的你的有意而我一不我给他们的呢跟他那不不妈妈我跟他那不不妈妈妈妈我还不多不我看的来给的一马还是的来你呢看看不来你呢
1: 아사바이마다이마가옥저로하비하다바다기진흥만은눌러내키우면서보마바보엄따비들봐아이스모이마통인자키니까
0: 에이하이디니하이디니야라즈비도이와고품도이바다칸데인웨이샤네야다미니야아이이바네샤나하이부도디일레게아소가지한다땡원도인루알레게
1: 야싱가호노탄다아이살레콜레스아두바바
0: 게도냐
1: 아쿠이테이도나시카바다네야는모이와품도야마파보리도리
0: 그이도라기네
1: 아이시로위마땅다바바나록스로베사도신도이코나로이싱고비과로잉콜시오토로시오토키시미마만다야미카이세아야마이네데과이
0: 회회회인웨이센터디파온로우리미센터기베사도소이드나라니아테예테이코나시진나나부타르수네모이데디싱도카게나칼레이파
1: 하이바바이콜레살로기게
0: 살로살로살로살로살로간다로고
2: 오자
0: 괜한낭다리시나나마나비사티미암사카르마탐다那那后期的来是开多的呢？哎，没他妈是单的，单啥的不的呢？爸母给苦巴老不呢？单啥的不的？能动来动，别人没苦啥不的？看我爸打我呢能不？
2: 我咋？哎，可以不干嘛？没上班子，跟你还不得不干上干啥对呢？咋？
0: 哎，上班子不对呢，能要不要了？能就是，用班不给你空堂对呢嘞？哎，不能呢，如果空堂的呢，我呢河南不能跑来你看看不能？
2: 单子开的苦啥什么？如果要个米粮的事不碰着不的，该干对呢？啥不啥了的？哎，得得要呢？没有那样的事，我是那样的路。
0: 哎哎哎，我是说，哎哇，路不干净的，看来不是啊，走路不累，怎么的啊，走来不累，怎么的？你按道过？
2: 阿杜， tambiyoba ingonda tongana mayam loi hanagra kansida he saita ainia ozana hari makai loi numa yagi
3: shin mia
2: takpi oza
3: wa akai mangang nu shin jang woni khangabra janwang woni mia na nongna bani sang ta bani gyan tawne nang bo
2: mangse sanu oza gi da makte izet mang badi ai sing na zedi oza
3: ni so lon ka kansida
2: adune dem hina phare ki mixa thi da na ba
3: hey yengoi nang se ai san bin halim ni gyan taw ozaguru haibe sidine apopo ma pa ka pankan ni nei aisa alwe ni nei nang ba
2: adune dem hin phare mi oza haiyen oza sikra ga ai atopa ma da mu yum ban ba yai da na nupi ma na ne yum ma ni da kana pan ba phang ba ba si lai ba pha ba sing da sa li ba
3: ya ya ya ya nang iro ko wa khal du mani putle mi na ona kana khal lo hai ha nang ni na sa do singara sa da pungyong nyom chali ma nam kari gino ha singara sa da pungyong nyom chali ma nam kari gino ba ha kam de no gi li rung gi ten tisun dari mahadev gi ma khut ne udwon chip nang kaur bra ha nang kaur bro he kaina don't talk me love ayang wai ai ka da phatha ge singila sam bu salo
2: masiyo za se za za ri hai zala gane zagoi se tam tok chige ne tak pi ya za na ti ang po za ni masiyo si ne mana yim mas ta thung la ga da ba ati bo ai mai thung ma se ma ji ma pham da ka ra ma ut ka ne
4: te ma
2: ipo
4: tamo le tra
2: nam ta mori thapa ma sa thoki
4: pabung se le ta ba
2: baba su ina no pa ma nga silang phai ri thung ani duna airport opposite khri kari
4: ai wari sinu pingang da ning re tamo do halaga tamo ma ghi madu nu ngare roi ma no chali mu pisa biu
2: hai bi ri sibo
4: nam dam ma si da sana biu moi na lai ba sing na ekho ina khumba nu ngai pa pa singum nu ngai ni hinu mai ki wa khul da ashi be kha ta wa ba he no wa ba chaina phung bai che ma sha na ta ma ni
2: ibu wa ibu wa di na ha su ya mi oi di na sha na to su pha sei ibu wa ta pi ri ba du bu nam ta mo lai tra ga ibu ho se nu ka na phang do ri ba no
4: de mo le yo ai ni pai bu khu lai se ma she ni wi lai ne mo pon chi lo che le ma ma khu lai a do wa ni khu lai pai du na na mi nu pa do in hat ka dam na te
2: ibu wa ho gi sel do sen do si le ma ta chi sa de na ai khu sing ja ga ni loni sin ge sen khong na ba dir interest na kan ba si hen khab ni
4: loni sin le ba sim bum sin oi bi abro loni sin le ba sim bum di na khoi ni khong khob si aro rai ma ge khoi ni dai khong chaka da ba ni te ma ai wa ka ya ngani de finance ha bi si dile khoi ni bu thor ba sim du ga che lo ri ba chel i pomi ski mad gi si ar mi le du ga khoi ga wa ngan ga da ba ni ai wa ma kha da ni de ta mo da la ga ta mo ko
2: pomi maksi ma gi ma ta ta lo ni ta ara ba हेसो आई ना होजिक ओका दोरी बसि मुकरी
5: आ बेमा हाय हाय बेमा ला ला ला नना नु पाला एना हे मई हुंग न बथवांग तो रोई बेमा
6: बाबा कना दनो बाबा ना खुई मुंग दो ओनसि लगा इबेमा हाइना को वीरी बिदु बो
7: नंग ना खुई मुंग छि नु पिएम ते याव दे नुंगाई ते ना हाय बदो
6: बाबा
7: हौजी ती ना तै मला एदना
6: कै नु ने हारी शिवा
8: ताबिरी सुमंग लीला नुंगशिवगी सायोल लीला सेगी अहन बसरु लीला सनबी की बना हरोल खोंगथांग आर्टिस्ट एसोसिएशन गी लीला कांगबो आगस फनिम फाल हौजिक ताबिरसी तोनाबम संदीप ने इसेगी सुरद खोंगबा वायोलिन

마당 시등의 시마디 해인기 담자리바 더름싱 삼랍나닝싱 잡을로자리 아카스 파닌팔 하우직 다비르시 나하로기 콘젤

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: विक्रांत गोल संगम द किलो अनि हारन चगल लेंगोय तो लग सीजन बना लौ द तारक दबा मयोन सिकपी मना कोनसिनबी उतोंग तिन अमदी वाहित तगिंगा थोपंगमे फंग फंग एग्रो वैल्यूज काय सामपात नियर सीसीपुर बस पार्किंग अमदी मनाक नकपा तिलार हिदाक योन फम सिंग
3: Bran GR yam na kanaraba logi vitamin amani Bran GR season abana phau pambibu leina tinadagi ngathokpa ngami phau pambibu macha hena puthok handuna puthok hengalali saudam thiba amadi mara satpangamdaba pambi sing ham ham launa chaholi Bran GR season abana hargi chang hantha hanbaya sangam amada supna tagi keji ani dagina keji ani makai phawwa season abaya fangfang adom gi manak nakpa tilhat hidak yonfam sing season abiyu Bran GR
4: Season of you, season of you. Kebuka, kebuka, kebuka. Hogi Sati Rabatil, Wahikamati Nungyanki Damak, UPL Limited Naputopa, Malemda Matangarabatil Arhidakni, Kebuka. Lau Sangamamada, Kebuka Kiloni Dung Saikibata, Saikiban Mitudigi, Nobit Humputra Tarit Fawdi, Wahikamati Nungyang Atokibana, Foglo Papawda, Wahikamati Nungyang Tagani Hibigi, Akibale Rerui. Season of you, Kebuka, Kebuka. Fang Fam, Oaina Bruce, Tangal Bazar Imphal Amadi, Atei Lohidayon Pam Singh. Sai Power Plus, Sai Power Plus. Lopam Dahab Kaduri Bar Singh Bu, Sarukmari Thokpagya Ma Anthan Duna, Lahu Senzang Bu Anthan Bangamba, Sakti Leraba, Lahu Masal Amani, Sai Power Plus. Sai Power Plus Asi, 200 ml, Yuryaka Tulaga Sijinarabati, Lopam Dakana Raba Hinkup Singhima Singh Hengar Handuna, Tung koina lebakle sa pahali. Lebakle sa pharabadi, thagadori ba pambi sing masama upanamadi. Laina tinna tahandabana, pothok saad kuntragi sang hengalali. Lisang sina lebakle sa pahanduna, magul lebo lokom ama oinanaba, sizinabiyu Sai Power Plus. Fang fam, oaina bruce, thangal bazar imphalamadi, atay lohidayon pam sing.
5: ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯔꯥꯃꯈꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯆꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ

0: ꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯏꯃꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯁꯞꯇꯥꯍꯤ ꯆꯔꯅꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯔꯒ ꯁꯃꯥꯄꯟ ꯁꯝꯔꯁꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ DMU ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯚꯥꯔꯠꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯣꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯆꯥꯟꯕꯥꯕꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ NAP 2020 ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯂꯣꯜꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯂꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯋꯥꯀꯔꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯈꯥꯡꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯇꯝꯐꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯜ ꯁꯣꯇꯤꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯛꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯅꯦꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯁꯦꯔꯧ, ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ CRPFꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯣ ꯖꯥꯙꯣ ꯅꯪ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ 45ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯨꯔꯖꯩ ꯂꯨꯞ ꯏꯃꯥꯈꯣꯜꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯊꯤꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯄꯜꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯜꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜꯗ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯏꯃꯥꯈꯣꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯔꯣꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯄꯔꯤꯁꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ 33x11 kV ꯀꯨꯃꯟ ꯁꯕꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ 11 kV TV ꯐꯤꯗꯔꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:00 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯀꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯔꯣꯠ, ꯀꯣꯡꯄꯥꯜ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯄꯥꯜ ꯈꯣꯡꯈꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯤꯊꯦꯜ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ 1 ꯀꯣꯟꯕ 11 kV ꯒꯥꯔꯤ ꯐꯤꯗꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯄꯨꯡ 4:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯩ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ MSPDCL ꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ
1: ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ, ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:30 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ OPD ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯖꯤꯟꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ, ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ, ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯤꯟꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯨꯔꯣꯟꯗ ꯂꯧꯅꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ, ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯨꯞꯄꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯌꯔ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁ OPD ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ OPD ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ꯫
0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯚꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯌꯨꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ 133 ꯁꯨꯕ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯤꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: ताबिरी बस आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दिगिनी हौजिक ताबिर सी था सिगी से सकपा रूप राग की से सकपा सिंह सैरेंग बदसेंद्र ओनाम पुथोकपा हैक्रुजम देवेंद्र थवान की तरानी पान बसगोल से नुमिता इंग सोक लिशिंग मगत चनीपान मरिफु तरा माथोई फैदाबुंगी लंपाकता ताबिर सी था सिगी से।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हेलो
5: हेलो
4: होय खनबियो तराम नोकचरी गुड इवनिंग मणिपुर की थौरम द मिंग लेफम हानाय तकबियो
5: थवाल जियां कि हानति
4: मिंग दोम तंगान हायबियो बा
5: थवाल कि हम शांति है बा
4: शांति है बा करम बा फिल्म गे से तासि गे शांति
5: मम नाइंदर बा थमोय गे आर्टिस्ट का पुष्पारानी गे कुंदोले रंग गो दागे
4: दो इसे इसे मतें गा नंतो पीरम गद्रो शांति yam phaja ba isei ne mate mangang thupiram lagi ti ngai ni
5: haidi haidi me mathang ngang chara
4: ga hoi thage chari thorum da saruk ya birak pagi tamuk tei sei se kudol tam jara age sei se pusing de arbin amadi pusparani ni sering bana binuranjan oinam serang bana toni hebam ni sei se kudol tam jari do di me am puna taminarasi

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग
1: गुड इवनिंग राम
0: गुड इवनिंग मणिपुर की थरम दत्ता राम नुकचरी मिंगलेफ हम तो हाना खंजगे
1: हां मैडम ए थमई बन ये नाम लेकर ले उत्तम तो
0: मिंग दम तंग हन हाई व्यू बा मैं एक सिक तंग सेंग दबो सी से
1: थमई बन ये नाम लेकर ले गे
0: होय
1: उसम इबोतो
0: उसम इबोतो
1: आओ
0: होय तक पियो करम फिल्म की सही तासिके
1: मेरा कोई की इंजन की अतिया दो सदान दन तक पा आई की पुसी तो उदो
0: आई की थमोई होरी बा है ना तो बस
1: आई की पुसी अना तो बा से मा आई तो
0: इंजन की अतिया फिल्म से दी
1: अदम चंगता से गे
0: होय एम नुंगाई से रोशि बिना वली सदानंद हाय बी हाय
1: होय आई इसाने पी उसम इथेल अदे टाइम वन स्नान ने काई दे ओता नक सोगा ताबी रिव क्वाट न ओ का तानी न जरे
0: एम नुंगाई जरे से से कुदोल तम जरा गे तो दी से से पसिंग रोशि बिना मदी सदानंद सेरिंग ब रोमी मैते सेरांग ब तोम ब थंगजम से से कुदोल तम जरे मैम पुना तामिनर से

हेलो हेलो, गुड इवनिंग। फोन तो भी रही सी मिंग लेफम खंगजगे सावित्री कर्म फिल्म की सही तासगे थमोय फिल्म एके यांगोई की खोंजेल अजित बाबू निंथौजम सेरेंब ननाव सगोल मांग सयांग इसे खुदोल तमजर आगे मैं पुनः तमीनर से हुई हुई गाता हो रहे हैं।

0: हेलो हेलो, गुड इवनिंग मणिपुर गीथा रोम दत्ता राम नोकचरी ꯊꯥꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ
1: ꯊꯦꯡꯀ꯭ꯌꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯝꯕꯥ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯌꯨ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ

0: एक सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
1: जी,
0: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ?
1: मथंगता भी रसी मिथुन विशाल मिश्रा मदी आशीष कौर मैं यहाँ पुनः सकमी नगी
2: जो जुबान बन गए।
3: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 11 सेकंड। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। और हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गई। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। साल था 1971 का और उसमें एक फिल्म आई थी जो सुपरहिट थी जिसका नाम था आप आए बहार आई। इसमें एक ऐसा नगमा था जो सच्चे प्यार की एक बेहद खूबसूरत दास्तान है। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ हम सब के पसंदीदा सदाबहार गीत मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आनंद बख्शी साहब के लिखे प्यारे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब का अनोखा संगीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है जब पहले ये फिल्म आई थी और उस वक्त लोगों ने जितना पसंद किया था। जब मोहम्मद रफ़ी साहब की रेशमी आवाज़ और सुरों की मलका लता मंगेशकर जी की सुरीले सुर एक साथ मिलते हैं तो प्यार का जादू सीधे दिल में उतर जाता है। इस गाने में वायलिन और गिटार की जुगलबंदी सीधे दिल के तारों को छेड़ती है। ये सिर्फ एक गीत नहीं दो प्रेमियों के बीच की प्यारी और रुमानी शिकायत भी है जो तकरीबन आज से 55 साल पहले भी उतना ही पसंद किया गया जितना आज वो हमारे दिल को छूता है। तो आइए सुनते हैं आप आए बहार आए फिल्म का वही बहुत ही खूबसूरत नगमा और आवाज़ें हैं रफ़ी साहब और लता जी की आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए गुनगुनाते रहिए

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में, जहां हम बात करते हैं सुनहरे दौर की तो नहीं लेकिन उसके बाद की बातें करते हैं, यानी सदाबहार गीतों की बातें होती हैं। और आज हम पलट रहे हैं यादों की वो सुनहरी डायरी जो हमें सीधे लेकर चलती है सदाबहार गीतों की दुनिया में। तो साल था 1971 का और बड़े पर्दे पर आई थी एक ऐसी मास्टरपीस फिल्म जिसने हर इंसान को जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की एवरग्रीन फिल्म आनंद की। और जब भी इस फिल्म का जिक्र होता है एक नगमा सीधा दिल में उतर जाता है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। मन्ना डे साहब की वो जादुई आवाज और सलील चौधरी साहब का वो नायाब संगीत जिसको लिखा था योगेश साहब ने। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के पीछे छुपा वो राज जो शायद ही किसी डायरी में दर्ज हो? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आज एफएम गोल्ड पर हर सिंगार की इस महफिल में इस राज से पर्दा उठाते हैं। असल में जब ये गाना बनकर तैयार हुआ तो इसे फिल्म के शुरू में यानी ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान सिर्फ बैकग्राउंड में बजाने के लिए कंपोज किया गया था। मेकर्स का इसे पर्दे पर किसी एक्टर पर फिल्माने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जनाब जब हमारे काका यानी राजेश खन्ना साहब तो ठहरे बड़े पारखी नज़र वाले, जब उनको ये बात पता चली और जब उन्होंने इस फिल्म का संगीत सुना, जैसे ही उन्होंने इस गाने की खूबसूरत धुन सुनी वो इसके दीवाने हो गए। उन्होंने फिल्म के मेकर्स के सामने अब जिद रख दी और उस जिद ये थी कि ये गाना तो मेरे किरदार पर ही फिल्माया जाएगा और वो भी पूरे दिल से। बस फिर क्या था, काका की इस जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और इसी एक जिद की वजह से फिल्म का पूरा शुरुआती विजुअल लेआउट ही बदल दिया गया। जहां सिर्फ पर्दे पर नाम दिखने वाले थे वहां राजेश खन्ना साहब समंदर के किनारे खुले आसमान के नीचे गुब्बारे उड़ाते हुए इस जिंदगी का फलसफा गाते नजर आए। है ना बेहद खूबसूरत और दिलचस्प बात। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं सलील दा का संगीतबद्ध किया हुआ मन्ना डे की आवाज और राजेश खन्ना साहब का वो सदाबहार अंदाज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जिंदगी कैसी है पहेली। हाय, आनंद फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा था मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त फिरोज। और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के गीत की। दोस्तों, जब रात की खामोशी में दिल को किसी की याद सताती है ना, तो नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। और ऐसे ही बातों बातों में ऐसा ही एक नगमा बना था। 1974 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आपकी कसम। एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत गीत आज हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जो इस फिल्म में था। जी हाँ, अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया वो सदाबहार नगमा करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाजें और हमारे अपने पंचमदा यानी आरडी बर्मन साहब का लाजवाब संगीत। लेकिन जनाब, इस रोमांटिक गाने के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि इस गाने का आइडिया कहां से आया होगा? चलिए मैं बताता हूं। असल में एक बार गीतकार आनंद बख्शी साहब और इस फिल्म के निर्देशक जे ओम प्रकाश साहब आपस में यूं ही कैजुअल बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में जिक्र छिड़ा कि यार, रात को नींद नहीं आई और रात भर बस करवटे बदलते रहे। आनंद बख्शी साहब के पारखे दिमाग ने इस आम सी बातचीत को तुरंत पकड़ लिया और वहीं से इस शानदार गीत के गाने के बोल पैदा हुए। और जब ये गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचा तो संगीत के जादूगर आरडी बर्मन ने एक और कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक और दिल की बेचैनी को दिखाने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड में एक पारंपरिक संतूर का इस्तेमाल किया। लेकिन रुकिए, बात अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इस गाने का सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी है। दरअसल किशोर दा और लता जी ने इस बेहद मुश्किल और उतार चढ़ाव वाले गाने को स्टूडियो में सिर्फ एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया था। एक ही बार में दोनों दिग्गजों ने प्यार की उस तड़प और कशिश को अपनी आवाज में हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो आइए, रात की इस रूमानी बेचैनी को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब गाना सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी और किशोर कुमार साहब की आवाजों में ये नगमा था फिल्म आपकी कसम से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में अब बात एक ऐसी फिल्म की जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक रही और वो फिल्म है 1973 में आई यादों की बारात। और जब इस फिल्म का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले गूंजती है कांच के गिलासों की वो जादुई खनक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश रोमांटिक गाने की, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की मखमली आवाज़ों से सजा ये गीत बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है और संगीत के जादूगर आर डी बर्मन यानी हमारे पंचमदा का बेमिसाल म्यूजिकल नज़रिया बहुत ही खूबसूरत। वैसे इस गाने का वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि कैसे पंचमदा ने स्टूडियो में असली कांच के गिलास और चम्मच को आपस में टकरा कर इस गाने का वो आइकॉनिक शुरुआती साउंड तैयार किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने का असली सीक्रेट इसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं बल्कि इसके गायन की बनावट यानी वोकल अरेंजमेंट में छुपा था। इसमें बेहद बहुत सारा उतार चढ़ाव था और इसी की वजह से यह नगमा बहुत खूबसूरत बना। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: آزا جی اور محمد رفی صاحب کی نئی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت ہر سنگار سے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد آپ سنیں گے 11:10 پر مارکیٹ منتر کا پنہ پرسارن, اور 11:40 پر میں رہوں گا آپ کے ساتھ لے کر گیت میرے من میت. تب تک کے لیے نمسکار.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा. भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है. उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है. दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया. प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया. ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है. श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है. इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया. श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की. उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं.
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है. मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है. नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है. नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है. 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं. जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding (MOUs) aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
4: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
3: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darjali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it is a symbol of the enduring friendship between the two civilizations. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. The Prime Minister also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme, with nearly 35 lakh females across the country using the scheme to expand their businesses. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh today. Nepal has issued fresh alert for flood in Bhotekashi River. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority, NDRRMA of Nepal, has urged residents living along the river's banks in Rasuwa, Nuwakot and Dhading districts to remain cautious following a rise in its water flow. The warning comes as the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday rose to 781. NDRRMA said 8,186 people have been evacuated evacuated so far from the affected districts, including 227 foreigners. Over 2,500 people are still missing following the disaster. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaswal said 149 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following the tragedy. India is continuously supporting the relief and rescue operation in flash flood hit Himalayan nation. The government has debunked a post circulating on social media which claims that NEET PG exam question papers were leaked in Jaipur. And that is the end of this news bulletin.
5: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण.

0: Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra. Today, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur, along with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: Dhanyawad Sarabjit, and namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: इंडिया एंड उज्बेकिस्तान एलिवेट टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेट बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $5 billion बाय 2030। Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak.
1: भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला। 2030 तक $5 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत

0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodhji, I see our first caller has already connected with us. Bilkul. From Uttar Pradesh. Vivek ji, swagat hai aapka, sawal poochein.
1: हाँ, मार्केट गंगा टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार
0: जी. नमस्कार.
1: मैं एसआईपी के द्वारा एटीएम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ 8 years से और मेरे पास एक लमसम अमाउंट है और मैं इसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एसटीपी के माध्यम से 12 किस्तों में 12 महीनों में मैं इसे स्प्रेड कर लगाना चाहता हूँ और मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. इसमें मैं एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू फंड और एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता हूँ. कृपया मुझे बताइए मैं इसमें कितना कितना पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज रखूँ और जो अदर है मिड कैप स्मॉल कैप इसमें कितना रेशो रखूँ. अलग अलग मुझे थोड़ा गाइड करें कि मुझे कितना अमाउंट स्प्रेड कर कितना परसेंटेज इसमें लगाना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ 7 से 10 years के लिए.
2: जी, तो देखिए कोई इसका बहुत डिफाइंड फार्मूला नहीं है लेकिन आपने बताया कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जैसे एक मल्टी कैप एक

0: Advice. Let's take a deep dive into the big news of the day. India and Uzbekistan today announced to elevate their mutual strategic partnership to comprehensive strategic partnership level. The Central Asian country also agreed to establish a framework for long-term supply of uranium to India and discuss the sites of the mining for rare earth minerals. Our correspondent reports that on the second day of his visit, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with President Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan, and both sides reviewed the entire spectrum of bilateral relations. Both countries signed 11 memoranda of understanding in various sectors, including mining, economic and financial dialogue, and tourism, among others.
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: The talks between both sides focused on expanding cooperation in the areas of trade and investment, agriculture, pharmaceuticals and digital public infrastructure, among others. An important commercial agreement was done to enable UPI apps of India to scan national QR, UZQR, for making merchant payments in Uzbekistan. Ashutosh, before we go any further with the more news in our program today, we've heard some positive headlines today. We've spoken about this comprehensive strategic partnership. We spoke about the FIIs infusing funds. So how do you view this in the landscape of mutual fund investment for a common investor?
2: So the broad undercurrent that we should look at is that the more opportunities Indian businesses have to expand their businesses, increase their exports to different countries, bilateral agreements like these help open up market access for Indian businesses across the globe. Indian companies may not, remain dependent on one or two economies or one or two geographies, and that is the whole idea, to broad base the business opportunities for Indian businesses, and agreements like these contribute to that. And a pass-through effect of this would land on the retail investors, because as businesses grow, they become more profitable, their values appreciate, their stock price appreciate, and in the long term, equity investors end up being the beneficiaries in an indirect way. So clearly there is positivity, and a long-term impact should be positive for retail investors as well.
3: Sarabjit ne abhi ab videshon ki baat shuru kar di hai, aur जब चर्चा इसी पर है तो मुझे अभी कुछ समय पहले की बातें भी याद आने लगी, जब हम बात कर रहे थे कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें, और कई श्रोता इस पर अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, और समय समय पर जब मौका मिलता है, जब खुलता है कहीं किसी फंड में निवेश का मौका मिलता है, तब कुछ लोग बहुत प्रॉम्प्टली उसमें निवेश भी कर रहे होते हैं। आशुतोष, अगर जब कभी ऐसा अवसर आता है, आरबीआई की लिमिट कहीं पर मिलती है हमें, जब निवेश करने का मौका आता है, तो एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत किसी ऐसे बाजार में, अमेरिका के या यूरोप के या एशिया के दूसरे बाजारों में एक्सपोजर वाले फंड्स में लगाना चाहिए?
2: तो देखिए, थोड़ा सा शायद मैं ये कहूँगा कि आपके स्केल पे डिपेंड करता है। अब आप बहुत छोटे निवेशक हैं तो आप कीप इट सिंपल, एक या दो डाइवर्सिफाइड फंड से आपका काम हो जाता है। कोशिश करिए वो ऐसा कोई आपको अच्छा फंड ले जो खुद ही थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेता हो। कुछ एक ऐसे फंड हैं जिनमें आपको ये एक्सपोजर मिल जाता है, लेकिन अगर आपका एक अच्छे स्केल का निवेश करते हैं आप, तो ये एक बुरा सुझाव नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड वे में क्रिएट करें। मेरे हिसाब से आप कम से कम 15% अपना पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से टारगेट करें कि आप विदेशी बाजारों में लगाएं, लेकिन अभी वो एवेन्यूज म्यूचुअल फंड सेगमेंट में बहुत लिमिटेड हैं। थोड़ा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आरबीआई की लिमिट्स की वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा निवेश बाहर कर नहीं पाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो आप जो बाकी एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
3: जी, बाकी एवेन्यूज में क्या क्या है?
2: बाकी एवेन्यूज में जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक वायबल

0: ऑप्शन है वो है गिफ्ट सिटी, जहाँ पे हालांकि अभी भी टिकट साइज थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन जानकारी का अभाव, क्योंकि बाहर के बाजारों का आपको जब तक जानकारी नहीं है तो आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट बिना जानकारी के करेंगे, उससे बेहतर है कि आप गिफ्ट सिटी के थ्रू, आप जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे गिफ्ट सिटी में आउटबाउंड फंड्स आपको मिल जाते हैं, उनके जरिए आप निवेश कर सकते हैं।
1: हम श्रोताओं को याद दिला दें सरबजीत कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। चले हम अगली खबर की ओर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने अगस्त में अब तक भारतीय शेयरों में खरीदारी कायम रखी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अब तक भारत के शेयर बाजार में 30,919 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 18,791 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदारी के माध्यम से आए, जबकि 12,128 करोड़ रुपये प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की गति अगस्त में भी जारी रही, जिससे मजबूत बुनियादी आंकड़ों और तिमाही आमदनी के साथ साथ रुपए के स्थिरता से भी समर्थन मिला। इस बीच ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख में मिला जुला रुझान है। अगस्त में अब तक एफपीआई ने वीआरआर से 289 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी अवधि में एफएआर के माध्यम से 627 करोड़ रुपए आए, और इसके उलट जनरल लिमिट रूट से एफपीआईज ने 2318 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं। एफपीआई के आंकड़े तो हमेशा हम बताते रहते हैं, हर हफ्ते बताते रहते हैं, कभी आ रहे होते हैं पैसे और कभी जा रहे होते हैं, हालांकि अभी काफ़ी समय से काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम अपने बाजार पर गौर करें आशुतोष, तो क्या लगता है कि अब हमारी निर्भरता शायद बहुत हद तक कम हो गई है?
0: जी, पिछले 8-10 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और इसका श्रेय जाता है भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनका जो पैसा एसआईपी के ज़रिए लगातार भारतीय बाजार में लगता रहता है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी काउंटर वेट अब दे पाते हैं एफआई इन्वेस्टमेंट को। पहले एफआईआई का पैसा जब आता था या जब जाता था उसके हिसाब से बाजार में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता था, लेकिन अब एक उसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बन गए हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा और किसी का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का ही है, जो एसआईपी के माध्यम से आज की डेट में करीब 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह जो एक स्टेबिलिटी के साथ भारतीय बाजार में लगता चला जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काउंटर वेट प्रदान करता है एफआईआई के उतार चढ़ाव को।
2: आशुतोष, वील कम बैक ऑन दैट। मीनवाइल लेट्स आस्क पंकज फ्रॉम कोलकाता व्हाट्स हिज क्वेश्चन।
1: पंकज, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने करीब 2 साल पहले एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड नाम से मैंने उसमें एसआईपी स्टार्ट किया था, तो करीब 2 साल पहले, 2 साल से मैं चला रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है मतलब कुछ रिटर्न कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा है, तो क्या ये सही टाइम है कि मतलब अभी निकल जाऊं या अभी हमें वेट करना चाहिए?
0: देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपने, आपको इस पैसे की अगर अगले 1-1.5 साल में ज़रूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम होराइजन इक्विटी डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्की हो सकता है, इतनी छोटी अवधि के लिए नहीं बने। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था रिटर्न बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इतनी जल्दी आप निराश होकर मार्केट से जाएं, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। पिछला 1-2 साल मार्केट्स के लिए जनरली डिसअपॉइंटिंग रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि पिछले 5-7 साल में जिस टाइप के मार्केट ने रिटर्न दिए थे और जिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ पिछले 1-2 साल में जो नए निवेशक बाजार से जुड़े, तो पुराने रिटर्न के मुकाबले उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फेस रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट की ऐसी कोई खास वजह है। आप इन इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस सबसे ज़रूरी है, तो मेरी राय में आप बने रहिए।
1: जी, अगले कॉलर है चेन्नई से सेतुपति, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: या गुड इवनिंग सर, कंप्लीट टीम, दिस इज रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
3: I'm not asking particular industries, how much percentage I can invest in this investment in semiconductor producing industries. If possible, name the industries. Thank you.
0: I'm afraid it's very difficult to say, put a specific percentage. As a mutual fund investor, you know, since this show is specific to mutual funds, I would say that that is a whole idea of investing in a mutual fund, that these kind of queries or these kind of doubts, you can very conveniently leave to the expertise of a fund manager. On your end, you should only choose a handful of good, diversified, long-term wealth-creating equity funds which have had a good and consistent track record of delivering a strong performance. These could be from the categories of flexi-cap, multi-cap, value. And let the fund manager decide what kind of allocations should go to which sectors and when.
1: वैसे क्या भारत में सेमीकंडक्टर्स के लिए कोई अलग फंड है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ?
0: जी नहीं, अभी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे भी भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा आपको मिलती नहीं है लिस्टेड यूनिवर्स में, तो इस थीम के स्पेसिफिक आपको कोई फंड अभी नहीं मिलेगा।
1: जी, एक और सवाल था आशुतोष, अभी जो कई बार हम लोग चर्चा भी करते रहते हैं और कई बार हमारे कई श्रोता और जो छोटे निवेशक हैं, जैसे अभी भी एक सवाल था कुछ, कई बार ऐसा होता है कि हमने निवेश किया था किसी फंड में और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसका नाम बदल गया है या कैटेगरी बदल गई है। जैसे कोई इक्विटी एंड डेट फंड था पहले अभी, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड हो गया है। तो क्या हमने जिस समझ के साथ उसमें निवेश करना शुरू किया था, क्या हमें उस पर विचार करना चाहिए फिर से, क्योंकि क्या वो एग्रेसिव हाइब्रिड मेरा रिस्क बढ़ा देता है?
0: तो देखिए, नाम अगर चेंज हो रहा है फंड का लेकिन काम नहीं बदल रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ वर्षों पहले सेबी ने स्टैंडर्डाइज करी थी कैटेगरीज, और फंड्स को ये निर्देश भी दिए गए थे कि सबके नाम उस कैटेगरी से अलाइंड होने चाहिए, जिससे निवेशकों को ये क्लियर पता चले कि वो किस टाइप के फंड में निवेश कर रहे हैं, उसका क्या रिस्क रिटर्न पे ऑफ होगा। तो उस एक्सरसाइज के रिजल्ट में काफ़ी फंड्स ने अपने थोड़े नाम चेंज किए थे। तो अगर फंड का सिर्फ नाम बदल रहा है, तो मेरा ख्याल उससे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक इन्वेस्टमेंट नीड के लिए सोच समझ कर एक फंड में इन्वेस्ट किया था, और अगर वो वही काम करता चला जा रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कैटेगरी चेंज का मतलब है कि उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, एक जैसे इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड में उसका नाम तब्दील हुआ, तो वो फंड काम अभी वही कर रहा है, 75% के करीब पैसा आपका इक्विटी में लगाता है, बाकी पैसा आपका डेट में लगाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही कॉन्टिन्यूटी, वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वही पे ऑफ्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर नाम चेंज के साथ साथ फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा और आपको देखना होगा कि क्या नई कैटेगरी में वो आपकी वही इन्वेस्टमेंट नीड्स को फुलफिल करने में फंड अभी भी सक्षम है या नहीं है। और आमतौर पर ये होता है कि जब भी फंड अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, अपनी कैटेगरी चेंज करता है, तो फंड इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देता है कि बिना एग्जिट लोड चार्ज किए उनको उस फंड से एग्जिट की ऑप्शन हमेशा प्रोवाइडेड रहती है। शुरू के कुछ हफ्तों में कुछ 30 डेज का या कुछ इस टाइप का विंडो दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। तो अगर वो फंड आपके लिए अब सूटेबल नहीं है नई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, तो आप उससे एग्जिट करने का निर्णय लेकर ज़्यादा सूटेबल फंड में मूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ नाम चेंज की वजह से मेरा ख्याल आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है।
2: आशुतोष, आई हैव बीन लिसनिंग टू यू वेरी केयरफुली एंड इन दीज लास्ट 20 मिनट्स यू हैव गिवन अस गुड पीस ऑफ एडवाइस। सो टेकिंग क्यू फ्रॉम जस्ट व्हाट यू हैव बीन सेइंग, नो डाउट रिटर्न्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड आर अ guiding criteria, but when it comes to choosing a mutual fund, how important is it to analyze your time horizons, financial goals, your own personal risk appetite? What's your expert comment on this?
0: It is the foremost, because fund selection comes later. The first thing is which type of fund is suitable. Often the start of any conversation is tell me the best fund, but the idea is first you should focus on getting the right type of investment fund for you. And then, the right fund, the question of the best fund comes later, because every fund, there are it's a very wide spectrum of funds which is available.
2: Correct.
0: Which diverge significantly in their risk return, you know, payoffs or the risk return promise that they provide to the investors. So it's very important that the fund you choose aligns well with your risk appetite, your investment horizon, the investment need that for which you are wanting to invest. And once you've zeroed down

0: the right category of funds, only then you go down to picking one or two suitable funds from those categories and going ahead with your investment.
1: जी और देखते हैं कि सोने और चांदी का क्या हाल रहा है. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तीन सप्ताह से जारी तेजी का सिलसिला थम गया. जैक्सन होल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श के आक्रामक रुख वाले पहले भाषण के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा. उम्मीद से अधिक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया. एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.8% गिरकर 156,281 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 4% फिसलकर 236,704 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 3.2% से अधिक गिरकर $4,494.70 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुआ. और सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 3.6% से अधिक गिरकर $66.99 प्रति ट्रॉय अंस पर बंद हुई.
2: और आइए पूछे कृपा शंकर जी से उनका सवाल.
3: हेलो नमस्कार जी.
2: जी नमस्कार.
3: हेलो.
2: हाँ जी सवाल पूछे.
3: हाँ मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चा है 12 साल का, उसके लिए अगर म्यूचुअल फंड हम आगे के लिए रिमेन करना चाहें तो किस ढंग से इसका प्रोसीजर है और हर महीने कितने कितने पैसे देने पड़ेंगे, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से तो जितना भी डाल सकते हैं तो होता ही है, तो इसका प्रोसीजर बताइए कि बच्चा 7th क्लास में है, 12 साल का है बच्चा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं आगे के लिए, कब तक वो हम उसको हर महीने कितना कितना, क्योंकि इसकी न्यू कस्टमर की जानकारी हम नहीं है हमारे.
0: जी तो मिनिमम निवेश आजकल म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी कम, कुछ फंड्स में तो आप 100 रुपये प्रति माह भी मिनिमम इन्वेस्ट कर कर आप SIP कंटिन्यू रख सकते हैं. काफ़ी सारे फंड 100 रुपये या 500 रुपये से शुरुआत आपको प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो आप अपने अमाउंट को इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अलाइन कर कर चूज़ कर सकते हैं. जहाँ तक बात रही कि निवेश किस तरह करें, तो देखिए आप बच्चे के नाम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए एक गार्डियन चाहिए होता है, जो गार्डियन का पैन का इंफॉर्मेशन लगता है और आप गार्डियन अंडर गार्डियनशिप बच्चे के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन 18 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उन पर फ्रीज लग जाएगा जब तक आप वो यूनिट्स बच्चे के नाम में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. थोड़ा ये मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो मेरी सलाह मानिए तो आप एज गार्डियंस पेरेंट्स आप अपने ही अकाउंट से बच्चे के लिए निवेश करें और बच्चे को चाहे आप नॉमिनी बना दीजिए उस इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट्स पे आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा. कोई 18 साल की उम्र के बाद कंपल्सरीली उनको ट्रांसफ़र करने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, तो आप अपने नाम से ही मेरे हिसाब से निवेश अभी शुरू कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टेड रखें, और बाद में आप कॉल ले सकते हैं कि आपको किस तरह ये यूनिट्स को ट्रांसफ़र करना है या उनको उसी तरह कंटिन्यू रखना है.
1: जी बच्चों की बात आई तो कई बार देखते हैं हम कि जो अपने 18 साल की लिमिट है, तो 20-21 साल के जो युवा हैं हमारे और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कुछ पॉकेट मनी से या कुछ पार्ट टाइम काम करके कहीं कुछ कमाया, और SIP का शौक आजकल इतना है या इन्वेस्टमेंट का शौक इतना है या अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि वो भी चाहते हैं कि हम इसमें निवेश करें. क्या इसके लिए निवेश करने पर कुछ उन्हें फिर टैक्स फाइल करना ज़रूरी हो जाता है या कुछ इस तरह की कोई बाधा तो नहीं आती उनके?
0: जी अगर कभी रिडम्पशन हो रही है और कोई कैपिटल गेन एक्रू हो रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी होगी. लेकिन अगर आप वैसे निवेशित हैं, आपको अदरवाइज अगर आपको इनकम आपकी इतनी नहीं है या आप रिटर्न फाइल करने से अदरवाइज एग्जेम्प्ट हैं, तो ऐसी कोई बाधा आपके लिए
1: कोई बाध्यता नहीं है.
0: जी
2: जी आशुतोष जी, सिंस वी आर ऑन द जेन जी, सो इन दिस फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, हाउ हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चेंज्ड द पिक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एज फार एज द यंग जनरेशन इज कंसर्न?
0: So I'd say not just for the young generation, but across the board, the digital platforms have greatly democratized access to mutual funds, because there was a time when to make an SIP, you had to give post-dated checks. When I started investing about 20-25 years back, at that time, you did not have a facility to create an e-mandate, an e-national. cash mandate through which your SIPs would be deducted every month. My first SIP was through post-dated checks. So I set up an SIP for 12 months and had to give 12 checks. But things have moved, at a rapid pace from there on. It is not just, it is the evolution of the entire ecosystem. It is not just about the platforms that have come up, but your KYC formalities now can be done completely through DigiLocker, through Aadhaar. All these facilities are completely digitized. And in about 15 minutes time, you can set up your account, from scratch and make your first investment. So, of course, it connects much more with the younger generation because they've started, with everything digital. But even for elder investors, for senior citizens who are comfortable doing it digitally, it's a great enablement.
2: All right. The Reserve Bank of India's special swap facility for foreign currency non-resident bank FCNRB deposits will be available for deposits mobilized until 31st August. The Reserve Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, external commercial borrowings and overseas foreign currency borrowings on 8th of June with a view to strengthen India's balance of payments and incentivize capital inflows. Meanwhile, we have another caller from Delhi, Vinod Ji, Sawal Puche.
4: पूरी मार्केट मंत्रालय टीम को मित्र से नमस्कार
2: जी नमस्कार
4: मैं आशुतोष से पूछना चाहूंगा कि जब मैं जैसे कि पिछले साल से मैं रिटर्न कुछ नहीं आया मैं म्यूचुअल फंड से लेकिन हम इन रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन को कैसे बीट करें हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने के थैंक यू
0: तो देखिए मेरी राय में जो सबसे पोटेंट तरीका मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी इन्वेस्टमेंट इक्विटी एज एन एसेट क्लास के पास शायद सबसे ज़्यादा सक्षमता है लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने की और एक जेन्युइन वेल्थ जनरेट करने की आजकल आपने रियल एस्टेट बोला रियल एस्टेट का देखिए टिकट साइज बहुत ज़्यादा है और उसके जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं बहुत सारे इनविजिबल एक्सपेंसेस भी रियल एस्टेट में होते हैं क्या सच में आप एक अच्छा रिटर्न बना पाते हैं कि नहीं मेरा ख्याल है केस बाय केस डिपेंड करेगा बट आजकल रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेने के लिए रीट्स के तौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से एक अच्छा साधन उभर के आ रहे हैं अभी बहुत सारे रीट्स मार्केट में नहीं है लेकिन सेबी काफ़ी जागरूकता इसके लिए ला रही है प्रयास किए जा रहे हैं कि रीट्स को भी एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बनाया जाए रियल एस्टेट में इन एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्ट करने का एक आम निवेशक के लिए जरिया मेरा ख्याल बनने का काफ़ी काफ़ी संभावना है काफ़ी पोटेंशियल है रीट्स में तो एक रीट्स एक आप दूसरी एसेट क्लास है जिसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं
2: Well, now let's take a peep into how the markets are expected to show up next week. Domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including macroeconomic data, foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the first quarter gross domestic product GDP estimate for the current fiscal year, scheduled to release tomorrow. The index of services production data will also remain in focus. Investors will also monitor manufacturing and services purchasing managers index, PMI readings, GST collections and forex reserves.
1: जी, आज वक्त इतना ही है आशुतोष कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
2: Listeners, a reminder of the headlines. India and Uzbekistan elevate ties to comprehensive strategic partnership, set bilateral trade target of $5 billion by 2030. Foreign portfolio investors infuse over 30,000 crore rupees into Indian equities in August so far. And in bullion market, gold and silver prices snap 3-week rising streak. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं आपके लिए उन चुनिंदा नगमों को लेकर आता हूं जो सुनहरे दौर के हैं यानी गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जो बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्यारे जिसे आप बार-बार सुनना भी चाहते हैं गुनगुनाना भी चाहते हैं मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलोस आदाब तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं बहुत ही प्यारे नगमे के साथ आवाज है मुकेश साहब की और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है सलील चौधरी साहब का यह फिल्म आई थी 1956 में और यह फिल्म है जागते रहो तो आइए इसे फिल्म का एक बेहद खूबसूरत नगमा मुकेश साहब की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर

0: सच है क्या सब सच।
1: जी हाँ, जिंदगी ख्वाब है, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक गहरा फलसफा है। साल 1956 की ये फिल्म जागते रहो सिता बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये नगमा मुकेश साहब की आवाज़ में। ये गीत हमें याद दिलाता है कि इंसान जिंदगी को पूरी तरह सच समझकर जीता है। वो कभी कभी एक ख्वाब जैसी भी लग सकती है, खुशियाँ हो या गम हो, रिश्ते हो या तन्हाई, वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहता है और यही जिंदगी की हकीकत है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की, जिसमें हम सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो हम सबको बहुत ही प्यारे हैं। और अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा फिल्म दिल देखो देखो से नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में ये बनी फिल्म आई थी 1959 में। एक ऐसा गीत जिसमें शरारत और मस्ती का बेहद खूबसूरत तालमेल है। फिल्म दिल देखे देखो का ये बेहद चुलबुला और दिलकश गीत अपनी मधुर आवाजों के लिए याद किया जाता है। इसे अपनी आवाजें दी मोहम्मद रफी साहब और आशा जी ने। इस गीत में प्रेम की वो मासूमियत है और वो शरारत है जो पुराने जमाने के रोमांटिक गीतों की खास पहचान हुआ करती थी। रफी साहब की दिलकश आवाज और आशा जी की चंचल अदायगी मिलकर गीत में एक खूबसूरत नोक झोंक पैदा करती है। ये गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता बल्कि प्यार में छुपी दोस्ती, शरारत और मुस्कुराहट को भी सामने लाता है। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा फिल्म दिल देखे देखो से।

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ों में नगमा था फिल्म दिल लेके देखो से। ये बेहद खूबसूरत गीत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आपने सुना। आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। ये गीत नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारी कव्वाली है। चलते चलते इसी कव्वाली को आप ज़रूर इंजॉय करें। ये कव्वाली है आरजू फिल्म से और ये फिल्म आई थी सुनहरे दौर में यानी 1965 में ये फिल्म आई थी जिसके लेखक निर्देशक और इसके निर्माता थे रामानंद सागर साहब। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में थे राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद, नाजिमा, नासिर हुसैन, अचला सचदेव वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा शंकर जयकिशन साहब ने। इसी फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली है आशा भोसले जी और मुबारक बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए खास तौर से।

0: भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज़्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। देश भर के 18 NIFT कैंपस से स्नातक होने वाले विद्यार्थी अपनी डिग्री मिलने और संस्थान में अपनी अकादमिक यात्रा के समापन का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आएंगे। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। थाईलैंड की ओर से नानापत कोचारोइनकाई ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 billion पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 billion व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darjali Dostalik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India and highlighted that it symbolizes the enduring friendship between the two civilizations. Mr. Modi reached in Tashkent on Saturday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his visit, Prime Minister Modi arrived in the Kyrgyz Republic to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in the capital, Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Kashi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority, NDRRMA, of Nepal has urged residents along the riverbanks in Rasuwa, Nuwakot and Dhading districts to remain cautious. Meanwhile, the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday has risen to 781. More than 8,100 people, including 227 foreigners, have been evacuated, while over 2,500 remain missing. Fresh heavy rain has worsened the flood situation in several parts of Odisha, with rivers in northern parts of the state rising again. The India Meteorological Department has issued red alerts for heavy rainfall in Balasore, Keonjhar and Mayurbhanj today. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in a dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium. Batting first, India posted 159 for 9 in the stipulated 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 in 15.3 overs. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 12:11 शुरू हो चुका है और अब आइए इस कार्यक्रम को भी शुरू करने का प्रारंभ करते हैं। मैं हूं आपके साथ श्रेयाशी और ये है हमारा प्यारा कार्यक्रम निशिगंधा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नगमे से।

0: तो दोस्तों अभी जो नगमा आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से लिया हमने, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल सजाए रजिंदर कृष्ण ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। और दोस्तों जब बात होती है बॉलीवुड के गानों की तो ज्यादातर गाने तो इतने मस्त होते हैं कि बस कहीं ना कहीं हमारे किसी पुराने ख्याल से, पुराने किसी बात से उसे जोड़े जाते हैं। और ऐसा ही एक ख्याल जस्ट अभी मेरे दिमाग में भी आ गया, बताओ क्या, यही कि जब भी प्यार में इकरार होता है, तकरार होता है, तो चाहे अनचाहे हम हमेशा एक दूसरे से सहमत हो ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने इस अगले गीत की तरफ, फिल्म सीता और गीता का ये अगला नंबर, आवाज आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल सजाए हैं आनंद बख्शी ने और म्यूजिक आर डी बैमन साहब का।
1: उठे सबके कदम देखो रम पम पम,
0: तो लीजिए ये अगला गीत फिल्म बातों बातों में से है, तो आइए एंजॉय करते हैं इस नंबर को।

पराया धन का ये नगमा दोस्तों हमने किशोर कुमार की आवाज़ में सुना, बोल सजाया आनंद बख्शी ने और म्यूज़िक आरडी बर्मन साहब का। बात भी बहुत सही कही है कि क्या होगा किसे क्या खबर, और ऐसे ही कुछ शब्द आज मेरे सामने से होकर गुजरे जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराएगी। जिंदगी अपने किसी भी पन्ने को दोबारा नहीं दोहराएगी। जो लम्हा आज मिला है उसे जी भर कर जी लो। जितनी यादें जितने हंसते हुए पल समेट सकते हो समेट लो, क्योंकि आखिर में हमारे पास सिर्फ कहानियां रह जाएंगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ।

ये एक और बेहतरीन नगमा फिल्म लव इन टोक्यो का लता मंगेशकर की आवाज में बोल सजाए हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा संघ में श्रेयसी और गुनगुना रहे हैं हम कुछ बेहद प्यारे गाने जो हमेशा हम गुनगुनाना पसंद करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखें और गीतों का सिलसिला हमेशा यूं ही बनाए रखें। बढ़ते हैं अब इस अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म गोरा और काला का अगला नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं आनंद बख्शी के और म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कैमलर फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। बढ़ते हैं अब अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म कल आज और कल से लिया है ये गीत हमने, आइए सुनते हैं ये गीत।

Mona, sulando, sulando.

0: muskerai. Pelle Zerna muskerai.
1: Pelle Zerna तो दोस्तों, जब इस तरह के कोई खास नगमे हमारे सामने आते हैं, हम जब उन्हें सुनकर यूं ही झूम उठते हैं, तो अक्सर मन में ना बड़ी अजीबोगरीब सी ख्याल, अजीबोगरीब सी बातें हमारे मन में उठ जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे दिल में भी एक ख्याल आ गया। भाई, अब वो ख्याल क्या था? तो ख्याल कुछ ऐसा था कि दिल तोड़ने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है, दिल तोड़ने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है, मोहब्बत में हर किसी को सफलता क्यों नहीं मिलती है। और लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, तो मेडिकल स्टोर पर इसकी दवा क्यों नहीं मिलती है।

फिल्म पड़ोसन का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, और जब बात होती है फिल्म पड़ोसन की, वो भी अपने बॉलीवुड के पुराने वाली, तो किशोर कुमार तो यू सबसे पहले अपनी आंखों के सामने आते हैं। जी हाँ, या ये गीत भी किशोर कुमार की आवाज में था और म्यूजिक दिया आर डी बर्मन साहब ने। ऐसे तो अभी गीतों का सिलसिला श्रेयसी के साथ शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी आगे भी कार्यक्रम हमारे साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे निशिगंधा को जल्दी विराम देने का समय हो जाएगा। तो विराम दें, उससे पहले चलते चलते एक आखिरी गीत आपके लिए, फिल्म का नाम इवनिंग इन पेरिस, आवाज रफी साहब की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम के दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघ हूँ मैश्रषि और घड़ी में ठीक 1:11 शुरू हो चुका है और ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुहाने का, जहाँ कुछ चुनिंदा पुराने बेहतरीन नगमे हम आपसे साझा करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और शुरुआत करें इस नगमे से।

फिल्म द ट्रेन से ये नगमा दोस्तों हमने सुना अभी, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक आर डी बर्मन का। आइए अब चलें अपने अगले गीत की तरफ। ये नगमा हमने लिया फिल्म लव इन टोक्यो से, बोल हसरत जयपुरी साहब के हैं और म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

रोशन त्रिशूल का ये नगमा दोस्तों आपने सुना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल सजाए साहिर लुधियानवी ने और म्यूजिक दिया खयाम साहब ने। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म राजकुमार का ये नगमा है, आवाज लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघ हूं मैं श्रेयसी और कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने कुछ बेहद पुराने। आइए अब बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ और कार्यक्रम में यूं ही नई नई कड़ियां जोड़ते चलते हैं।

तुमसे बात करते करते कभी कभी मुझे कोई जल्दी नहीं रहती, ना बात खत्म करने की ना कुछ खास कहने की, बस तुम्हारे साथ थोड़ा और रुके रहने का मन करता है। और अजीब है, बातें वही रहती हैं, दिन भी वही रहता है, फिर भी तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा थोड़ा और बेहतर लगता है।

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से ये नगमा हमने लिया दोस्तों, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, भूल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक आर डी बर्मन साहब का। अगला गीत जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ लता मंगेशकर की ही आवाज में है, फिल्म है जब जब फूल खिले, बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म ब्लैकमेल का ये नगमा दोस्तों किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, बोल सजाए राजेंद्र किशन ने और म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब बढ़ चलें अपने इस अगले गीत की तरफ, फिल्म प्यार ही प्यार का ये अगला नगमा आपके लिए।

और दोस्तों इस गीत के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है कि जल्दी हमें अपने कार्यक्रम गीत सुहाने को देना होगा यहाँ विराम, लेकिन चिंता की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप बने हुए हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी पर एफएम गोल्ड पर, जहाँ पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। जल्द अब आप सुनेंगे समाचार, समाचारों के पार मैं श्रेयसी फिर से आपसे जुड़ जाऊंगी कुछ नए और गीतों के साथ। तो चलते चलते ये एक आखिरी नगमा आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज़्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं, कुशल श्रम शक्ति और बढ़ती नवाचार पारिस्थितिक पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पाली खेली। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 billion पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 billion व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darjali Dustilik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles Giriraj Singh will also be present on the occasion. The government has debunked a post circulating on social media which claimed that the NEET PG exam question papers were leaked in Jaipur. The fact-check unit of the Press Information Bureau has said that the claim is misleading as there has been no question paper leak in the NEET PG examination. It said technical disruptions were faced at Sitapur test centers in Jaipur, Rajasthan due to internal power supply issues. It said the examination for the affected students will be conducted on 5th of next month. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal has urged residents along the river banks in Rasuwa, Nuwakot and Dharding districts to remain cautious. Meanwhile, the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday has risen to 781. More than 8,100 people, including 227 foreigners, have been evacuated, while over 2,500 remain missing. India continues to support relief and rescue operations in the flood-hit Himalayan nation. Now on to the sports in women's cricket. India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium. Batting first, India posted 159 for 9 in the stipulated 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 in 15.3 overs. In the FIH Men's Hockey World Cup 2026, Germany retained the World Cup title with a 1-0 win over Spain in the final at the Belfius Hockey Arena Wavre, Belgium last evening. In squash, India's Abhay Singh won the men's single title at the Tuanku Muris Trophy 2026 in Seremban, Malaysia. The top-seeded Abhay defeated third-seeded Henry Luong of Hong Kong, China 3-2. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। संघ हूं मैं श्रेयसी और घड़ी में ठीक 2:11 शुरू हो चुका है, तो आइए शुरू करें अपने कार्यक्रम रात सुरमई को। और शुरू करने के लिए शुरुआत है इस नगमे से।

फिल्म पापा कहते हैं का ये नगमा दोस्तों आपने सुना। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की थी, बोल सजाए जावेद अख्तर ने और संगीत है राजेश रोशन का। एक और प्यारा सा नगमा आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, फिल्म खामोशी से लिया है ये हमने। आवाज है मजरू अलका याग्निक और हरिहरन की।

चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

फिल्म कभी हां कभी ना का ये नगमा दोस्तों आपने सुना जो फिल्माया गया था शाहरुख खान और पिक्चर के काफी सारे किरदारों पर। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, आवाजें थी कुमार सानू और देवकी की, म्यूजिक था जतिन ललित साहब का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जोड़ते हैं इसमें एक और अगला गीत। फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये नगमा, आवाज़ें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की, बोल सजाए आनंद बख्शी ने और म्यूजिक है जतिन ललित का।

फिल्म दिल तो पागल है का ये नगमा आपने सुना. फिल्माया गया ये नगमा शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित पर. बोल थे आनंद बख्शी के, स्वर था लता मंगेशकर और उदित नारायण का, और संगीत से सजाया उत्तम सिंह ने. कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, संघ में श्रेयसी और आप बने हुए हैं AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. आइए बढ़ चलें अब अपने अगले गीत की तरफ. फिल्म खिलाड़ी का ये नगमा, आवाजें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की, बोल सजाए अनवर सागर ने, और म्यूजिक है जतिन ललित का.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ से के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 150,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। श्रीमती सीतारामन ने शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। अब भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
1: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को comprehensive strategic partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 billion पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 billion व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oli Darjali Dustilik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in

3:10 और 55 सेकेंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय आप सुनेंगे प्रोग्राम हमराही। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना विसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी किसी से पहली मुलाकात होती है तो न जाने क्यों उसकी सूरत दिल में बस जाती है। न कोई लंबी पहचान, न ढेरों बातें, बस एक मुस्कान, एक नजर और मन कह उठता है इस चेहरे में कुछ तो खास है। कुछ चेहरे खूबसूरत होने से ज्यादा यादगार होते हैं। उन्हें देखने के बाद चेहरे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वो एक चेहरा बार बार याद आता है। तो आइए इसी मासूम सी पसंद और दिल में उतर जाने वाले एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया का ये गीत, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: सपने भी कितने खूबसूरत होते हैं, इनमें कोई बंदिश नहीं होती, कोई दूरी नहीं होती। मन चाहे तो एक पल में किसी खूबसूरत दुनिया की ओर सैर कराएं, जहां सिर्फ प्यार हो, मुस्कुराहटें हो और किसी का साथ हो। और जब सपनों में भी वही चेहरा बार-बार नजर आए तो दिल की धड़कनें भी जैसे कोई मीठी धुन गुनगुनाने लगती है। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। तो आइए सपनों और चाहतों की इसी हसीन दुनिया में चलते हैं फिल्म बनफूल के प्यारे गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: ओ सपना

0: से चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे जितना महसूस करो उतना ही कम लगता है। कभी किसी की मुस्कान दिल को छू जाती है, कभी उसकी आवाज़ सुकून दे जाती है, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब किसी की मौजूदगी हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। सच्ची मोहब्बत में बड़े बड़े वादों से ज़्यादा मायने रखता है एक दूसरे का साथ, भरोसा और वो एहसास कि कोई है जो दिल के बहुत करीब है। तो आइए इसी प्यार और अपनेपन की मीठी सी धुन में खो जाते हैं और सुनते हैं फिल्म खून की टक्कर का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

3:30 और 52 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। दोस्तों, कभी कभी प्यार कोई नई कहानी नहीं लिखता, बस पुरानी कहानी के किसी खूबसूरत पन्ने को फिर से खोल देता है। एक मुलाकात, एक नजर, एक एहसास और दिल फिर वही कह उठता है, शायद प्यार आज भी उतना ही खूबसूरत है। तो चलिए याद करते हैं उस प्यार को जो वक्त के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि हर मुलाकात के साथ और गहरा होता चला गया। सुनिए फिल्म दयावान का बेहद खूबसूरत गीत, जिसे गाया है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने।

जिंदगी का सफर अकेले तय करना भले ही आसान हो लेकिन जब कोई अपना साथ चलने वाला मिल जाए तो हर मुश्किल रास्ता भी खूबसूरत सा लगने लगता है। एक सच्चा साथी वही है जो सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि उन खामोश पलों में भी हमारे साथ खड़ा रहे जब शब्द कम पड़ जाएं। रिश्ते भी तो इसी साथ से मजबूत होते हैं, एक दूसरे को समझना, संभालना और बिना किसी शर्त के साथ निभाना। कभी-कभी दिल की सबसे बड़ी खुशी बस इतनी होती है कि कोई अपना पास हो और हम ये कह सके तुम हो तो ये सफर अच्छा है। तो आइए इसी खूबसूरत साथ और अपनेपन के एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म आहुति का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी ने।

कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं और जब किसी की नजर किसी खास शख्स से मिलती है तो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। कभी हल्की सी शरारत, कभी चाहत का एहसास और कभी वो अनकही सी खुशी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्यार की खूबसूरती भी तो यही है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती, कभी एक नजर ही काफी होती है सामने वाले के दिल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आइए आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में महसूस करते हैं उन्हीं नजरों की मासूमियत और प्यार भरे एहसास को। फिल्म जेल यात्रा का ये गीत है जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

दोस्तों रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि उन वादों में भी होती है जो दो दिलों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। एक सच्चा वादा कभी कभी मुश्किल वक्त में उम्मीद बन जाता है और दूरियों के बीच भी अपनेपन का एहसास दिलाता है। जिंदगी में बहुत से वादे किए जाते हैं, कुछ वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं तो कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें दिल उम्र भर संभाल के रखता है। तो आइए आज उन्हीं वादों और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल के इस प्यारे गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि कोई कहे चलो जहां भी जाना है साथ चलते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे का साथ और रास्ते भर की मीठी बातें। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म फिर वही रात से, और इस गीत को आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आप सुनिए ये प्यारा सा गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। राहत और बचाव दल ने कल 5वें दिन भी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं. इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को comprehensive strategic partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 billion पार कर चुका है. अब हमने 2030 तक $5 billion व्यापार का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे.
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honour, the Order of Oli Darajali Dustalik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her US visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the US-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bote Koshi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal has urged residents along the riverbanks in Rasuwa, Nuwakot and Dharjeeling districts to remain cautious. Meanwhile, the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday has risen to 788. More than 8,100 people, including 227 foreigners, have been evacuated, while over 2,500 remain missing. External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that 149 Indian nationals have been rescued so far. India continues to support relief and rescue operations in the flood-hit Himalayan nation. Fresh heavy rain has worsened the flood situation in several parts of Odisha, with rivers in northern parts of the states rising again. The India Meteorological Department has issued red alerts for heavy rainfall in Balasore, Kyonjhar and Mayurbhanj today. Now on to the sports. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium. Batting first, India posted 159 for 9 in the stipulated 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 in 15.3 overs. In the FIH Men's Hockey World Cup 2026, Germany retained the World Cup title with a 1-0 win over Spain in the final at the Belfuse Hockey Arena in Weiwei, Belgium last evening. And that is the end of this news bulletin.

0: 4:10 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम में अर्चना बिसारिया। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अकेले आगे बढ़ने का नाम नहीं है, कभी किसी का हाथ थामना, किसी को हौसला देना और किसी की छोटी सी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना भी कामयाबी का हिस्सा है। हम सबकी मंजिलें अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनापन बना रहे तो सफर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। याद रखिए, दुनिया में प्यार सिर्फ रिश्तों में नहीं, व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी के लिए अच्छे शब्द बोलना, मुश्किल समय में साथ खड़ा होना और बिना किसी स्वार्थ के किसी का हौसला बढ़ाना, यही तो असली इंसानियत है।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

207 का मतलब सिर्फ किसी के साथ होना नहीं है, किसी के पास होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने की वजह देना है। ऐसे रिश्ते हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को अच्छे लोगों के साथ जीने में भी है। तो अपने आसपास के उन लोगों की कद्र कीजिए जिनका साथ आपको बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। सभी कुछ हमारे मुताबिक चलता है तो कभी छोटी सी बात भी परेशानी का सबब बन जाती है, लेकिन मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती हैं। ऐसे वक्त में किसी अपने का भरोसा बहुत मायने रखता है। एक सच्चा साथ हमें याद दिलाता है कि हालात चाहे कितने भी उलझे हों, उन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए जब कोई बात बिगड़ जाती है तो उस वक्त आप घबराइए मत, थोड़ा ठहरिए, सोचिए और फिर एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर उलझन का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है।

दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा मेरे यानी अर्चना विसारिया के साथ। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी मंजिलों के पीछे दौड़ते हैं और इसी दौड़ में वो छोटी छोटी खुशियां कहीं पीछे छूट जाती हैं जो कभी हमारे दिल को खास बना देती थी। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि सुकून सिर्फ बीते कल में नहीं होता, आज भी हम अपने लिए कुछ पल निकाल सकते हैं। चाय की प्याली, अपनों से बातें, खुली हवा और थोड़ी सी बेफिक्र मुस्कान।

जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल किसी धुन को पकड़ लेता है और फिर कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही तो जुनून है, जब कोई सपना आपको भीतर से पुकारे और आप बिना रुके उसकी ओर बढ़ते चले जाएं। हर किसी की राह अलग होती है, मंजिल अलग होती है और सपने भी अलग ही होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हम वही रास्ता चुनें जिस पर बाकी लोग चल रहे हैं। जरूरी है कि हम अपनी पहचान और अपने दिल की आवाज को समझें। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग आपसे सवाल भी करेंगे, लेकिन अगर आपकी मेहनत सच्ची है, इरादा मजबूत है, तो अपने सफर पर भरोसा रखिए।

जिंदगी में हम बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हर बात का असर हमारे साथ लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के जाने के बाद भी हमारे भीतर गूंजते रहते हैं, कभी सीख बनकर, कभी याद बनकर, और कभी हमें सही रास्ता दिखाने वाली आवाज बनकर। इसलिए बोलते वक्त शब्दों की कद्र कीजिए और सुनते वक्त उनकी सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी कही हुई बात किसी के दिल को हौसला भी दे सकती है और किसी के सफर की दिशा भी बदल सकती है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन पीछे छूटे अनुभवों से सीखना भी उतना ही जरूरी है। बीते कल की आवाजों को बोझ मत बनाइए, उन्हें अपनी अगली मंजिल की सीख बनाइए।

दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो उन छोटे छोटे एहसासों में छुपी होती है जो हमारे दिल को सुकून देते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की कद्र कीजिए, खूबसूरत यादों को संभाल कर रखिए और हर रिश्ते में सच्चाई और सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि खुशबू की तरह अच्छी यादें भी दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं।

दोस्तों प्यार सिर्फ किसी एक रिश्ते का नाम नहीं प्यार अपने सपनों से भी हो सकता है अपने काम से अपने परिवार से और उस जिंदगी से भी जो हमें हर दिन एक नया मौका देती है इसलिए दिल में शिकायतों से ज्यादा उम्मीद रखिए नकारात्मकता से ज्यादा मुस्कुराहट रखिए और हर दिन को पूरे दिल से जीने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब दिल खुश हो तो हर मुश्किल के बीच भी कोई ना कोई धुन जरूर सुनाई देती है आप सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत और मुझे इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की नमस्कार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पढ़ाई के लिए उज्बेकिस्तान जाने वाले भारतीय युवाओं के हितों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी किया। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से अब संपर्क हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमरीका के दक्षिण कैरोलिना पहुंची। वे एशविले में होने वाली G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर उधार और कर्ज के स्तर से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख अमरीकी उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हरा दिया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा कर कांस्य पदक जीता था। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 billion पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 billion व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
2: The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Ouli Darajali Dustalik, by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her US visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the US-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhote Koshi River after a rise in its water flow. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority of Nepal has urged residents along the river banks in Rasuwa, Nuwakot and Dharding districts to remain cautious. Meanwhile, the death toll from flash floods that struck the Nepal-Tibet border on Wednesday has risen to 788. More than 8,100 people, including 227 foreigners, have been evacuated, while over 2,500 remain missing. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that 149 Indian nationals have been rescued so far. India continues to support relief and rescue operations in the flood-hit Himalayan nation. Fresh heavy rain has worsened the flood situation in several parts of Odisha, with rivers in northern parts of the state rising again. The India Meteorological Department has issued red alerts for heavy rainfall in Balasor, Khonjar, Mayurganj today. Now onto the sports. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in dominant fashion, beating Thailand by 94 runs at the Dubai International Stadium. Batting first, India posted 159 for 9 in the stipulated 20 overs. In reply, Thailand were bowled out for just 65 in 15.3 overs. In the FIH Men's Hockey World Cup 2026, Germany retained the World Cup title with a 1-0 win over Spain in the final at the Belfuse Hockey Arena in Wavre, Belgium, last evening. In squash, India's Abhay Singh won the men's single title at the Tuankon Mosreef Trophy 2026, Seremban, Malaysia. And that is the end of this news bulletin.

5:11 हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और एक बार फिर से मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपको सुनवा रही हूँ प्रोग्राम भोर सुहानी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए फिल्म आखिरी खत के इस गीत के साथ।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे आखिरी खत में। और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है खुशबू।